नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कुशल धनुर्धर या निशानेबाज को देखा है? जब एक शिकारी जंगल में किसी अत्यंत तेज और चौकन्ने हिरण का शिकार करने निकलता है, तो वह केवल तीर कमान हाथ में लेकर हवा में तीर नहीं चलाता। सबसे पहले वह अपने शरीर को एक विशेष मुद्रा में बिल्कुल अडिग और स्थिर करता है। अपनी कमान को पूरी ताकत से कानों तक खींचता है, अपनी सांसों को रोकता है और अपनी पूरी एकाग्रता और उस लक्ष्य पर टिका देता है। यदि उसका ध्यान जरा सा भी भटका या कमान ढीली पड़ी, तो वह चंचल हिरण एक ही छलांग में घने जंगल में ओझल हो जाता है और शिकारी का सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है। अध्यात्म की यात्रा भी बाहर के किसी जानवर के शिकार की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर कुलांचे भरते चंचल मन को साधने का एक महाअभियान है। कबीर साहब आज हमें उसी परम धनुर्धर की तरह अपने शरीर और प्राणों को साध कर मन का शिकार करने की कला सिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह दार्शनिक सूत्र। काया कसु कमान जू पंच तत् करी बाण, मारो तो मन मिरग कु नाही तो मिथ्या जान। काया कसु कमान जू पंच तत् करी बाण, काया कसु कमान जू पंच

श्रोताओं, कबीर साहब साधक को एक सच्चे आध्यात्मिक योद्धा की तरह ललकारते हुए कहते हैं, काया कसु कमान जू, हे साधक, तू अपनी इस काया यानी शरीर को योग, संयम और आसन की दृढ़ता से एक कमान यानी खींचे हुए धनुष की तरह पूरी तरह कस लें, इसे आलस और प्रमाद से मुक्त कर दें, पंच तत्व करी बाण और अपने भीतर के पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा अपनी पांचों प्राण ऊर्जाओं को एकाग्र करके ज्ञान और विवेक का एक अचूक बाण यानी तीर बना लो। अब उस अचूक तीर का निशाना कहाँ लगाना है, अगली पंक्ति में कबीर इसका लक्ष्य बताते हैं। मारो तो मन मिर्ग को, यदि तुझे सचमुच कोई शिकार करनी है तो बाहर किसी जीव को मत मार, अपने ही भीतर विषय वासनाओं के घने जंगल में बेतहाशा दौड़ रहे इस मन मिर्ग यानी चंचल मन रूपी हिरण को ज्ञान के तीर से साध लें, इसे शांत कर दें, नहीं तो मिथ्या जान। और यदि तू अपने इस मन को वश में नहीं कर सका तो समझ ले कि तेरी सारी बाहरी पूजा, सारे ग्रंथ, सारे तिलक और सारी साधनाएं मिथ्या यानी पूरी तरह झूठी, दिखावटी और व्यर्थ हैं। यह दोहा हठ योग और राजयोग के समन्वय का शिखर है। मुंडोपनिषद में भी प्रणव अर्थात ओम को धनुष, आत्मा को तीर और ब्रह्म को उसका परम लक्ष्य कहा गया है। मन को यहाँ मिर्ग यानी कस्तूरी मृग की तरह माना गया है जो अपने ही भीतर की सुगंध से अनजान होकर बाहर की झाड़ियों में भटकता रहता है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक शरीर और इंद्रियां अनुशासित नहीं होंगी और जब तक प्राणों की ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होगी, तब तक मन की इस चंचलता को भेदना असंभव है। असली विजय दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने ही मन को साधने में है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर देखिए कि हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है। हम रोज अपने तीरों से दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमजोरियाँ और दूसरों की बुराइयों पर निशाना साधते रहते हैं। हम पूरी दुनिया को सुधारने का बीड़ा उठाए घूमते हैं, लेकिन हमारे भीतर का वह मन मिर्ग वासनाओं की हरियाली देखकर हर पल बेलगाम भागा जा रहा है। आज कोशिश कीजिए अपने भीतर का धनुधर बनने की, अपने शरीर को अनुशासन और अपनी सांसों को सजगता की कमान में कसिए, अपने विवेक का तीर सीधे अपने मन के अहंकार और चंचलता पर चलाइए। जब आप उस राम नाम के सुमिरन से अपने भीतर के इस मन को साध लेंगे तो आपकी सारी भटकाव शांत हो जाएगी और अपने ही भीतर परम आनंद के परम पद को प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

भाग 88 बा तथागता तूने प्रस्तुत किए चार आर्य सत्य। दुख है, दुखों का कारण है, दुख निरोधन है, तो दुख निरोधन का मार्ग भी है। इन आर्य सत्य में दुख का कारण इस सत्य की खोज तेरे इस प्रतित्य समुत्पाद सिद्धांत के 12 कड़ियों में हुआ है। प्रतित्य समुत्पाद की अविद्या यानी अज्ञान इस श्रृंखला का तूने किया उल्लेख और दिखा दिया ज्ञान संपादन का तत्व यानी चार आर्य सत्य में से चौथे घटक को स्पर्श कर आर्य अष्टांगिक मार्ग की यात्रा तूने दिखाई निब्बाण की ओर जाने की, पूर्ण रूप से सुख भोगने की, प्रयत्न पूर्वक निब्बाण की ओर जाने का यह ज्ञान साधना का सफर यानी अविद्या का नाश। तूने कहा इस विश्व में जरा मरण है, दुख होने का सत्य तूने निर्देशित किया और उनका कारण बता दिया, जाति। जाति के कारण दुख होता है निर्माण। जाति यानी जन्म, दुख का कारण है जन्म। जन्म होते रहने से दुख की निर्मिति होती है। जाति निर्माण होने का कारण है भव यानी जन्म तब होता है जब जन्म लेने की इच्छा होती है। भव का कारण बनता है उपादान यानी इच्छा तब निर्माण होती है जब होता है मोह तुम्हें। उपादान का कारण है तृष्णा अर्थात आसक्ति के कारण मोह निर्माण होता है। तृष्णा निर्मिति का कारण है वेदना यानी वेदना से निर्माण होती आसक्ति। स्पर्श से निर्माण होती है वेदना यानी स्पर्श संबंध और अनुभूति के संयोग से वेदना का जन्म होता है। षडायतन के कारण निर्माण होता है स्पर्श अर्थात छह इंद्रियों के माध्यम से स्पर्शानुभूति होती है। ये कौन सी छह इंद्रियां हैं? जीभ, नाक, आँख, कान, त्वचा और मन यानी षडायतन। अर्थात छह इंद्रियां नाम रूप से निर्मित है ये षडायतन। चेतना के कारण इन छह इंद्रियों की होती है अनुभूति। विज्ञान से निर्माण होते हैं नाम रूप यानी चेतना के कारण शरीर के अस्तित्व का बोध होता है। संस्कार के कारण होती है निर्मिति विज्ञान की और इसके पूर्व का कार्य होता है सहायक चेतना की निर्मिति के लिए। संज्ञा, विज्ञान, संस्कार और वेदना का समुच्चय है चेतना तथा पृथ्वी आप तेज वायु से बनता है रूप यानी काया। पंच स्कंध से नाम रूप बनता है। चेतना का विज्ञान तो विश्व भर में विद्यमान है। शरीर में उसका अस्तित्व नाम रूप से है। अविद्या से निर्माण होता है संस्कार यानी ज्ञान के अभाव में कर्म तैयार होते रहता है। 12 कड़ियों की श्रृंखला अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्शो वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। दुख हमें महसूस होता है कारण जन्म, इच्छा, मोह, आसक्ति, वेदना, स्पर्श, छह इंद्रिय, नाम रूप, चेतना, पूर्व का कर्म और ज्ञान का अभाव, इन सब की एक दूसरों से संलग्नता होती है। इसीलिए होना चाहिए ज्ञान का प्रभाव अविद्या को समाप्त करने के लिए। ज्ञान का प्रवाह अखंडित चलता रहे। तूने कहा संपूर्ण सृष्टि का यह ज्ञान मुक्त करने के लिए है सहायक। इसीलिए प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत, कार्य कारण भाव का सिद्धांत, चार आर्य सत्य के साथ जांच परख करना और आर्य अष्टांगिक मार्ग से अगली जीवन यात्रा की ओर पहल करना, जिससे आप सभी ज्ञान से प्रकाशमान होंगे और सुख प्राप्त कर सकते।

नमस्कार, ओम शांति। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात। जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात, यहां तक आ गए और हमने ये देखा कि जो जो प्राणी मात्र को ये पृथ्वी पे धरा पे जो कोई प्राणी है उनके मन में जो कोई आशा है, इच्छा है, ये सफल होने दो, ऐसे माउली ने मांगा। तो अगर हर किसी की इच्छा पूरी हो जाएगी, संभव है? संभव है, क्योंकि वो इच्छा ही अच्छी होगी, बुरी इच्छा होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके पीछे जाएंगे तो विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो। सारा विश्व अगर एक ही सूरज को देखता है, एक ही भगवान को देखता है और भगवान में स्वधर्म से, आत्मिक स्थिति से देखता है, तो बुरी इच्छा या बुरा विचार, बुरा संकल्प मन में आने की संभावना है ही नहीं। और इसलिए माउली ने कहा, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। मेरे बहुत सारे मित्र जो है वो कहते हैं कि ये नव ओवी है, उसमें से तो इतने कम शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा 8-9 एपिसोड में उसका पूरा अर्थ पूरा हो जाएगा। ये जो अर्थ निकलता है ये कहां से है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कवि जो रहता है, एक कवि रहता है, उसका काव्य है, उसका जब रसग्रहण होता है तो ऊपर ऊपर से शब्द देखेंगे तो अर्थ अलग रहता है, और जब उसका रसग्रहण करने लगते हैं तो अर्थ अलग निकल जाता है। और इसलिए कहते हैं, जे न देखे रवि ते देखे कवि, और उसके आगे बढ़ के ऐसे ही कहा जाता है, और जो जे न देखे कवि ते देखे अनुभवी। योगीराज थे, माउली योगीराज थे, और उन्होंने कुछ योग साधना करते समय अनुभव किया होगा, कुछ विजन लिया होगा, और ये विजन उन्होंने प्रत्यक्ष किया, और ये विजन लेने के साथ साथ उन्होंने विश्वात्मक देव परमात्मा से प्रार्थना की। इसको डिकोडिंग भी कहा जाता है। देखिए, पहले जमाने में टेलीग्राम रहता था, कट्ट कड़ रहता था ना, उसमें क्या कट्ट कड़ करते हैं कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन उसका जब वाक्य तैयार हो जाता था, पंक्ति तैयार हो जाती थी, सेंटेंस तैयार हो जाता था, तो मैसेज आता था। बाद में टेलेक्स आ गया। मेरे कई सारे मित्र जो है ओसीएस वीएसएनएल के, वो समझते होंगे कि वो टेलेक्स में कागज की पट्टी रहती थी और उसमें बहुत सारे छिद्र थे, होल्स थे, और होल्स की पोजीशन, नंबर ऑफ परमिटेशंस, कॉम्बिनेशन देखने के बाद वो पढ़ सकते थे कि ये मैसेज क्या है। तो मैसेज है कि नहीं? ऊपर से देखेंगे तो कागज की पट्टी है, लेकिन जब खुल के देखेंगे, सोच के देखेंगे, तब तो उससे मैसेज निकलता है। वैसे ये पसायदान है माउली का, ऊपर से तो नव ओवी है, और अंदर जाके झांक के देखेंगे तो खजाना है। और ये खजाना खोलने का प्रयास, छोटा सा प्रयास शुरू है, आपकी प्रेरणा से, आपकी प्रेम से। आप बड़े अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और इसलिए मेरा कहना यह है कि ये जो जोजे वांछील तोते लाहो प्राणी जात, यहां टर्निंग पॉइंट है। अब तक माउली ने एक्सप्लेन किया, बैकग्राउंड तैयार की, लेकिन जैसे मैंने कहा था, माउली का जो विजन है स्वर्ग का, ये स्वर्ग कैसा है, कैसा आएगा, उसका रोड मैप क्या है, वो अभी आगे के चरणों में अपने को दिखेगा, हम देख सकेंगे उसको। तो ये रोड मैप जो है, स्वर्ग जो है, जैसे पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था, सचमुच स्वर्ग आएगा
क्वेश्चन मार्क, क्योंकि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग है या नहीं है, इसमें ही बड़ा डिस्प्यूट है। लोग बोलते हैं कि स्वर्ग है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में जो जाता है तो पीछे वापस नहीं आता बोलने के लिए कि स्वर्ग क्या है, ऐसी मान्यताएं हैं। अगर ऐसा है तो यह स्वर्ग की संकल्पना कहां से आई? ये गाने जो लिखे थे चित्रपट में, पिक्चर्स में, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी वसेरा, वो भारत देश मेरा, वो कहां से आया? संकल्पना कहां से आई? ये कवि के मन में जो विचार है वो कहां से आया? स्वर्ग में जो सुख था, आनंद था, वो जो संकल्पना है, आनंद है, सुख है, वो कहां से आई? यही भारतवर्ष है, और इसलिए भारतवर्ष को सोने की नगरी कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं। और मजे की बात देखो, है दोनों सोने के, द्वारका भी सोने की है और लंका भी सोने की है, ऐसे मानते हैं। लेकिन लंका जलाते हैं और द्वारका डूब गई, तो यह द्वारका क्या है और लंका क्या है, यह भी देखना है। तो यह स्वर्ग जो रोड मैप है, स्वर्ग में हर कोई सुख और शांति से जीता है, एक ही धर्म है, एक ही भाषा है, और मनुष्य देवता स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि सनातन धर्म कहते हैं सबसे पहला, क्योंकि हिंदू धर्म की स्थापना भी किसने की हमें मालूम नहीं है। शंकराचार्य जी ने उसका पुनरुज्जीवन किया, लेकिन स्थापना किसने की? और उसके पहले सनातन धर्म कहते हैं, और उससे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये देवता जो थे, 33 करोड़ देवता जो है, कौन है? और माउली ने वो देवताओं का ही वर्णन अगले चरणों में किया है। और देवता बनने की पहली स्टेज है एंजेलिक, फरिश्ता। ये जब स्टेज बनेगी तब देवता बन जाएंगे। और इसलिए देखिए, हमारे यहां जो कहावतें हैं, वाक् प्रचार है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य है। ऐसे नहीं वाक् प्रचार आते हैं, इसलिए हम कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में चली गई। पहले देवताएं थी, देवताएं वाम मार्ग में चली गई, देवताएं भ्रष्ट हो गई। पहले नहीं थी भ्रष्ट, पहले अच्छी थी, बाद में भ्रष्ट हो गई। देवताएं कैसे भ्रष्ट हो सकती है? हमेशा मन में, हर किसी के मन में, दिल में, आत्मा में सत्व गुण, देवताओं का गुण और सुर और असुर दोनों गुण है। जो प्रभावशाली होता है उसके हिसाब से वातावरण निर्मित होती है। और यह संकल्प जो है, यह संकल्प इस वातावरण को श्रेष्ठ या शुद्ध बना सकते हैं या बुरा भी बना सकते हैं। तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सारा विश्व जब एक ही संकल्प में स्थित हो जाएगा और एक संकल्प आएगा कि अभी बहुत हो गया, अभी उसमें परिवर्तन चाहिए, अच्छे दिन आने चाहिए, तो ये विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। और ये परिवर्तन होते समय अवस्था कैसी होगी, ये अगले चरणों में माउली ने रोडमैप दिया है, उसके ऊपर भी हम उसका चिंतन करेंगे। तो शुरुआत में जैसे शुरुआत हो गई, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसाय दाने, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। पूरी जो संकल्पना है, एक ही संकल्प जो है, अच्छा ये सृष्टि का परिवर्तन हो, इस धरा पे, इस भारत वर्ष पे स्वर्ग का अवतरण हो, ये संकल्प मन में, एक ही संकल्प आता है। उसका उदाहरण मुझे याद आता है, आळंदी में ऐसे कहते हैं, बीच में जी मराठी न्यूज में भी दिखाया था, आळंदी में ऐसे कहते हैं कि ज्ञानदेव की जो पालखी है वो उठाते हैं तब ऊपर का जो कलश बोलते हैं, टॉप मंदिर में जो टॉप रहता है, वो कलश जो है वो हिलता है,
ऐसी मान्यता है, मैंने भी देखा था। अभी ये मान्यता है कलश जो है वो फिक्स है, कैसे हिलेगा, लेकिन हिलता है, और वो हिलता है वो उसका फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप भी दिखाई थे न्यूज में। मुझे ये लगता है कि जब 8-9 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जब पालकी उठाते हैं और उनके मन में संकल्प आता है कि ये अभी हिलेगा, एक ही संकल्प एक ही समय आ गया तो जो निर्जीव चीज है वो भी हिलेगी। और यहां तो वातावरण है, तो वातावरण बदल करने की, परिवर्तन लाने की सृष्टि में शक्ति हमारे संकल्प में है। और यही संकल्प कैसे है ज्ञानदेव जी ने, मौली ने अगले चरणों में दिखाया है, उसका हम चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे, पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसका आनंद भी लेंगे। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, ओम शांति।

नमस्कार, ओम शांती। दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो, जोजे वांचील तो ते लाहो प्राणी जात। इसके ऊपर हमने चिंतन किया, विश्व स्वधर्म और सूर्य क्या है ये भी देखा, और ये सब होने के बाद जोजे वांछील तो तिलाओ, हर एक की इच्छा अगर पूरी होनी है तो इच्छा अच्छी कैसी है, इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। अभी जैसे पिछले एपिसोड में बताया था कि ये टर्निंग पॉइंट है, या एक एपिसोड पूरा होने के बाद दूसरा एपिसोड शुरू होता है, क्योंकि ये प्रीफेस है। सतयुग का जो रोड मैप मैंने कहा था कि माउली के दिमाग में या मन में या विजन में होगा, सतयुग कैसे आएगा, या स्वर्ग जिसको कहते हैं, या पृथ्वी पे इसी धरती पे सुख शांति के दिन कैसे आएंगे, ये जो विजन उनका था उसके लिए प्री कंडीशन है कि विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, फिर जोजे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। जब ये होता है तो क्या होगा, तो बाकी जो अभी ओवी है, बाकी जो लाइनर्स है, तो मुझे लगता है ये वर्णन जो है वो स्वर्ग का भी है, और स्वर्ग लाने के लिए जो निमित्त है, जो कारण है, और जिन्होंने लाने हैं उनका भी वर्णन है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये अगली लाइन जो है तो ये है, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। वर्षत सकल मंगली, वर्षत मीन्स वर्षा, शॉवर, जैसे बारिश होती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, तो जो गर्मी है, तपत है धरती की, वो ठंडी हो जाती है, और ठंडा ठंडक जो है बहुत अच्छी लगती है दिल को। अभी जो हम कहते हैं कलयुग में हमारे जो मन है, शरीर तो तपता ही है, वो गर्मी का मौसम रहता है तो शरीर तपता है, धरती तपती है, और बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, और हर कोई बारिश के लिए राह देखता है। अभी हम लोग भी देख रहे हैं ना बारिश के लिए राह, कब आएगा, क्या होगा, बारिश कब आएगी, हर एक का प्रेडिक्शन कुछ रहता है, उसके लिए बहुत सारी तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वैसे अभी ये कलयुग के अंत में सबके मन भी तप गए हैं, पक गए हैं, और कहीं ना कहीं शांति की, शीतलता की बारिश अगर होगी तो मन को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वर्षत सकल मंगली, और कैसे है, ऐसे लोग आने चाहिए कि जिनकी वर्षा जो है, वर्षा एक्चुअली उपमा दी है, वर्षत सकल मंगली, मंगल, वर्षत सकल मंगली, इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोग जो हमेशा अच्छे विचारों की, सद्भावना की, या सत्संकल्पों की बारिश करते हैं, वर्षा करते हैं। ये कैसी हो सकती है वर्षा, वर्षत सकल मंगली, और सकल मीन्स हमेशा। इसके ऊपर से मुझे याद आया कि मंगल जो है, मंगल ग्रह बोलते हैं ना, मंगल, और मंगल हमेशा अच्छे के लिए बोलते, मंगल मुहूर्त, मुहूर्त जो है वो भी बोलते हैं मंगल, हर कुशल मंगल बोलते हैं, किसी का अगर कुशल मंगल है, मंगल है ना, सब पवित्र या अच्छा। लेकिन यही मंगल अगर हमारे जन्मपत्री में आ जाता है तो क्या होता है, यही मंगल जन्मपत्री में आ जाता है तो कभी कभी वो अमंगल हो जाता है। अभी जो लड़की के पिता है, और किसी लड़की के जन्मपत्री में या लड़के के भी जन्मपत्री में मंगल है तो कितनी तकलीफ होती है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, जो अनुभवी है सब जानते हैं। तो ये मंगल जो है, कभी मंगल है कभी अमंगल है, मंगल वही है,
लेकिन हमारे लिए कभी वो अमंगल होता है कभी मंगल होता है। लेकिन माउली जो बोलती है वर्षत सकल मंगली, हमेशा के लिए मंगल, कभी भी अमंगल नहीं है। और ऐसी वर्षा होनी चाहिए, मीन्स हम जब भी कोई भी जो अच्छे लोग हैं जिनको हम संत कहते हैं फरिश्ते कहते हैं, वो कैसे होंगे? हमेशा वर्षा करेंगे अच्छे विचारों की, सद्भावनाओं की, सत विचारों की, सत संकल्पों की वर्षा करेंगे। और जो कोई उनके सामने आएगा उसे आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस। और गुड विशेस और संकल्प जो है या आशीर्वाद जो है उसका हमारे जिंदगी में बहुत महत्व है। कभी भी कुछ भी प्रसंग होता है, शादी ब्याह होते हैं या किसी का बर्थडे होता है, तो हम हमेशा गुड विशेस देते हैं। क्यों देते हैं गुड विशेस? संकल्प। हम अगर हमेशा शुभ चिंतन करते हैं, दीपावली में किसी सबको ग्रीटिंग देते हैं, दीपावली शुभ चिंतन, कोई भी त्योहार है तो उसके लिए शुभ चिंतन करते हैं, तो ये शुभ चिंतन हम कभी कभी करते हैं, त्योहारों के निमित्त करते हैं या कोई स्पेशल पर्पज है तो करते हैं, सकल मंगली नहीं, वर्षत सकल मंगली। तो माउली जो है, ज्ञानदेव जो है, वो देखते हैं कि ऐसे लोग हमेशा होने चाहिए कि जो हमेशा के लिए सकल मंगली, हमेशा के लिए सुमंगल का चिंतन करेंगे, सुमंगल चिंतन करेंगे, उनका चिंतन हमेशा मंगल होगा और वो सबको बौछार करेंगे। ईश्वर निष्ठांची मांडियाळी, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। मांदियाळी, मांदियाळी मीन्स क्या है? बहुत बड़ा समुदाय है, ऐसे नहीं कि एक दो आदमी आएंगे और एक दो फरिश्ते होंगे, संत होंगे और वो शुभ चिंतन करेंगे, नहीं, बड़ा समुदाय होगा। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मांदियाळी मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा संकल्प करेंगे तो क्या होगा? वातावरण में बदलाव आएगा। और ये वातावरण में बदलाव आएगा तो इसलिए उन्होंने उपमा दी है मांदियाळी, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। और वो मांदियाळी क्या है? जिनकी निष्ठा ईश्वर के पास है। निष्ठा, निष्ठा मीन्स सिर्फ विश्वास नहीं है, निष्ठा मीन्स एक होता है कैसी भी परिस्थिति आने दो विश्वास अटूट रहता है, और इसलिए उसे निष्ठा बोलते हैं, ईश्वर निष्ठ, ईश्वर में जिनकी निष्ठा है ऐसे। और दूसरा भी निष्ठा भी बोलते हैं, निष्ठा मीन्स ध्यान, ईश्वर का ध्यान जो करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? हमेशा ईश्वर का चिंतन करेंगे। और जब मन में राम रहता है तब कभी हराम होता नहीं है और जिंदगी में आराम भी आ जाता है। अगर मुझे जिंदगी में आराम आना चाहिए तो मन में राम होना चाहिए। और ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, हमेशा चिंतन उनका ईश्वर के बारे में होगा तो मन में कोई बुरे संकल्प आएंगे ही नहीं। और इसलिए माउली ने कहा है, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता, अनवरत भूमंडली भेटतु भूता। इसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। तो ये रिकैप अगर करेंगे तो क्या होगा? जैसे दुरितान से तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाओ, जोजे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। ये होने के बाद अभी कैसी कैसी कंडीशन आनी चाहिए, ये जो माउली ने कहा है, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता, इसके ऊपर अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। जिंदगी है, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हमारे चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि हमें रास्ता मिल गया है। अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में हमने बहुत से मुद्दों को उठाने की कोशिश की है जो हमारे लिए कहीं अड़चन बन जाते थे, कहीं ऐसा लगता था कि इनसे पार नहीं पाया जा सकता। तो आज भी कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए है ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। शिवानी जी, हमने पिछली बार अगर आपको याद होगा तो एक कॉल आई थी हमारे पास जिसको हमने डिस्कस किया था कि एक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की प्रॉब्लम थी
1: शिखा
0: जी, और इतना अच्छा उसका रिस्पांस आया क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों ने कहा कि हम फेस कर रहे हैं लेकिन लगता था कि ये प्रॉब्लम है या नहीं और कैसे इसके बारे में बात की जाए। तो सोल्यूशन हमें अपने ही अंदर तलाशने हैं, ये बात समझ में आई, और नेगेटिविटी को किस तरह से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। तो आज जो मुद्दा हम उठाएं वो भी वो मुद्दा है जिसके लिए हमें बहुत से कॉल्स आए हैं और वो है रिश्तों की बात। क्योंकि रिलेशनशिप्स जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं, हम में से हर कोई ये जानता है कि रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का या प्यार का रिश्ता नहीं, मेरा और आपका रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, बॉस और सबॉर्डिनेट का रिश्ता, उसमें जो ट्रस्ट की कमी आ गई है, जो फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके लिए क्या करें?
1: आई थिंक औरों पे ट्रस्ट करना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि शायद हम पहले खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, यू नो। तो मुझे जो चीज़ मैं खुद करूँ तो मुझे लगता है दूसरे भी वही करते होंगे। खुद की इंटेग्रिटी, अगर हम खुद अंदर से भरपूर हैं, वी आर फिल्ड एंड यू नो वी आर कॉन्फिडेंट, तो फिर हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। ट्रस्ट करना तब मुश्किल हो जाता है जब इनसिक्योरिटी होती है, एंड उसमें भी जो एक बिलीफ सिस्टम फिर आ जाएगा कि वो है कि ये धोखा देंगे, ये गलत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से वो धारणा बन चुकी है कि मेजोरिटी तो सब लोग धोखा ही देते हैं, मेजोरिटी तो सब लोग गलती कर रहे हैं आजकल,
0: दुनिया तो ऐसी ही
1: ऐसी, मतलब ये जो बिलीफ है ना, तो ये थॉट हमें अच्छी वाली लाने नहीं देगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि हम ब्लाइंडली यू नो वी जस्ट नॉट केयरफुल और हम ब्लाइंडली सबकी चीज सबके ऊपर सौंप दें, लेकिन एक व्यक्ति को हम इवैल्यूएट जब एक बार कर लेते हैं, और एक्चुअली हमें स्टार्ट ऑपोजिट चीज से करना चाहिए। हम नॉर्मली करते हैं कि हम परखते रहेंगे फिर जाकर बहुत समय बाद हम कहेंगे अब हम उनको ट्रस्ट करते हैं। We can try to do it the other way around.
0: Complete faith.
1: हम पहले completely ट्रस्ट करते हैं,
0: लेकिन मुझे लगता है उससे हम अपनी इमोशन हटा दें क्योंकि हाँ, वो बहुत हर्ट करता है, यू नो, एक एक बात बिकॉज आई बिलीव इन दैट। मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ, you know, हर बार हम इतना, क्योंकि ये डिस्कशन ऐसा है कि जिसमें पर्सनल मैं इन्वॉल्व ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। इट्स लाइक आई हैव बीन लाइक दिस, यू नो, कि मैं कंप्लीट फेथ पे ही जिंदगी जीती। एक बार प्रोग्राम में कहीं बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था, नहीं, पर एक आंख खुली रखनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि नहीं, वो भी कहीं गलत होगा, कंप्लीट आंख बंद करके ही फेथ करो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसको नेगेट करते जाते तो हर्ट साथ में जुड़ता जाता है। पहला धोखा पहला हर्ट देगा, फिर आप दोबारा हिम्मत करके हर्ट विश्वास करते हैं, दूसरा धोखा मिलता है, तो कहीं इमोशन को हम हटा देंगे।
1: अगर हमने रियली बहुत अच्छी तरह से किसी को ट्रस्ट किया था जेन्युइनली अंदर से पूरी तरह से, तो धोखा मिलने का चांस पहली बात बहुत कम है। क्योंकि what we have experienced is कि अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, you will always get trust in return. That's like mandatory. उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। सिर्फ ये है कि हमें, जब हमें किसी से धोखा मिलता है तो हम अपनी वाली स्थिति हम नहीं चेक कर पाते, हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने हमें धोखा दिया, लेकिन उनके धोखा देने का कारण क्या। अगर हमने रियली अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट ट्रस्ट किया है किसी पे, the person just cannot do without trusting you back. You know, it is like it's totally with you, totally for you. वो बिल्कुल, मतलब कैसे रुक सकता है आपको ट्रस्ट करे बिना। तो इट विल हैव टू स्टार्ट विथ ट्रस्टिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अभी मैं इनको पहले इवैल्यूएट कर लूं, परख लूं, फिर अगर लगे कि ये ठीक है तब ट्रस्ट।
0: यहां सवाल ये उठने लगता है कि do we really understand what real faith is? सही तरह से विश्वास क्या, कैसे किया जा सकता है?
1: सबसे पहले ये सोच के सामने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, एक दुकानदार हो, लाइक वी अगेन डिस्कस, थॉट इज ट्रांसमिटिंग, यू नो। तो इट्स एज सिंपल एज अगर मैं एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाऊँ और मेरे मन में ये विचार चल रहा हो, ये तो मुझे चीट करने वाला है, मुझे ध्यान से चलना चाहिए, मुझे ऐसे चलना, आई एम क्रिएटिंग दैट वाइब्रेशन एंड वो वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचेगा ही. एंड दूसरी तरफ अगर मैं ये थॉट क्रिएट करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे से गलत नहीं कर सकता, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, आई एम ऑनेस्ट इन माई डीलिंग विद पीपल, तो ये मेरे साथ क्यों गलत करेगा. बट देन दिस हैज टू बी मेंटेन्ड विद एवरीबडी. आप ये नहीं कर सकते हो कि आप 10 लोगों के साथ गलत करो और फिर मैं आपके सामने आकर ये सोचूं कि मैंने आपके साथ गलत नहीं किया तो आप मेरे साथ गलत क्यों करेंगे. इफ आई एम क्लीन इन माई डीलिंग विद एवरीबडी, देन देर इज नो वे दैट एनीबडी शुड रिबाउंड एंड डू एनीथिंग रॉन्ग विद मी. लेकिन

0: Now, there's a fixed percentage I have to take, and I never ask him what is the rate of anything. Because, and I have realized over a period of time, क्योंकि and especially अभी के समय पर, क्योंकि बहुत कम लोग उनको trust कर पाते हैं. बहुत कम लोग trust कर रहे हैं, तो जब उन्हें कोई ऐसा किसी को भी मिलता है जो उनके ऊपर इतना trust कर लेता है, वो उस trust को नहीं तोड़ना चाहते. वो तोड़ेंगे ही नहीं, because that trust is very valuable to them.
1: It's so rare, actually.
0: It's very rare, so it's very valuable, and it is so precious कि मैं 5 रुपए के लिए उस trust को नहीं तोड़ूंगी आपकी. तो then you know sometimes जो मेरे साथ, तो वो कहेंगे आपने पूछा भी नहीं वो कितने का, मैंने कहा वो राइट ही देगा. वो राइट ही दे रहा है, और अगर उसने 5-10 रुपए ज्यादा ले भी लिए आज, नहीं तो कल मुझे कहीं और से अगर पता चली गया, इट्स हिज लॉस. मेन चीज ये है कि दूसरे को ये रियलाइज करना पड़ेगा, इट्स हिज लॉस. उसने 10 रुपए कमा लिए, विश्वास खो दिया. बट फॉर मी, जस्ट बिकॉज ये सोच के कि कोई एक धोखा देने वाला है, आई कीप डाउटिंग एवरीबडी आई मीट.
1: लेकिन जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके 10 रुपए का उसने धोखा दिया, विल यू कंटिन्यू बीइंग विद हिम? आई जस्ट वांट टू
0: आस्क. नो, आई विल जस्ट हैव टू बी वन स्टेप मोर केयरफुल.
1: या एंड अनदर, विल यू गेट हर्ट?
0: नो, बिकॉज ही डिड नॉट टेल मी ट्रस्ट मी. सी व्हाई आई विल नॉट गेट हर्ट, ये मेरा डिसीशन था. उसने नहीं कहा मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो. उसने ये नहीं कहा कि आप बिना पूछे लो, ये मेरा डिसीशन था. उसने ये नहीं, उसने रेट बताने से मना नहीं किया, ये मेरा डिसीशन था. तो अगर ये मेरा डिसीशन है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीशन. आई प्लेड माई पार्ट, ही प्लेड हिज पार्ट. आई प्लेड माई पार्ट ऑफ नॉट आस्किंग, ही प्लेड हिज पार्ट ऑफ टेकिंग मोर मनी. फ्रॉम टुमारो आई विल बी केयरफुल, बट आई विल नॉट गेट हर्ट. Not with him, because he's fine with what he did.
1: Achha, aur,
0: but I will not stop trusting other people just because one person turned out to be a little different. Lekin jab majority time soch aisi chalti hai ki nahi ye galat hi kar rahe hai. Matlab aap dekhiye, aap morning se start kijiye. Agar maid late aa jaye, kyun late aaye, wo genuine bhi koi reason hoga to nahi doubt. Auto rickshaw wala doubt, shopkeeper se mile doubt. Inhi logon par itna doubt karte hain. तो जो अपने कोलीग्स, ये तो मेरे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता, इसको तो आगे बढ़ना है, ये तो मुझे नीचे खींचना चाहता है, ये तो मेरे पीठ पीछे गलत बोलता ही होगा. वी आर क्रिएटिंग सो मच ऑफ दैट थॉट. ये भी हो सकता है कि ऐसा हो रहा है कि आपके पीठ पीछे कोई बोल रहा है या कोई कुछ गलत कर रहा है, बट देन हाउ एम आई गोइंग टू चेंज इट? यू सी, इफ आई कीप चर्निंग अबाउट इट एंड वो ही एनर्जी मैं और ट्रांसमिट करूँ, तो वो मिसट्रस्ट और स्ट्रांग होता जाएगा. I will have to still keep that thought कि नहीं ये ठीक है, ये अच्छे हैं. I will have to recognize the goodness in everybody, because everybody is so beautiful.
1: And another thing is, like, maybe we have to continue giving chances. That's what I wanted to ask. Should we continue giving chances even if we
0: actually
1: have
0: realized? We are nobody to give a chance to anybody. Who are we? Who has given me the authority to give you a chance? You are what you are. ठीक है, आपको जैसे रहना है आप रहिए. मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपको चांस देने का, आपको फॉरगिव करने का. आई एम नोबडी. ठीक है, आई ओनली हैव अ चॉइस कि मुझे आपके बारे में कैसा सोचना है. दैट्स ऑल. आई जस्ट हैव दैट मच चॉइस. आई डोंट हैव द पावर टू चेंज यू. आई डोंट हैव द पावर टू मेक यू लाइक आई वॉन्ट यू टू बी. आई जस्ट हैव द पावर टू चूज माई थॉट. नाउ मेरे पास चॉइस है कि आपके बारे में सोचूं कि आप बहुत अच्छे हैं, या आपके बारे में सोचूं कि नहीं आप तो धोखा दे सकते हैं. आपके बारे में सोचूं कि आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, या ये सोचूं कि आप मेरे साथ गलत ही करेंगे. आपके बारे में सोचूं कि आप सच बोल रही हैं इस टाइम, या सोचूं कि आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं. दैट्स ऑल द चॉइस आई हैव. एंड जस्ट डिपेंडिंग ऑन दीज चॉइसिस दैट आई मेक इन एवरी थॉट, आई एम बिल्डिंग और ब्रेकिंग रिलेशनशिप.
1: वंडरफुल. लेकिन अगर हम ये जो हमने अभी जो मुद्दे उठाए, जो एग्जांपल्स या जो बातें ली, जो कोट किया, वो लोग थे जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम जो हमारे परमानेंट है, हमारे अपने हैं, वहाँ जो ट्रस्ट ब्रेक होना और उसके बाद दोबारा अपने आप को तैयार करना, इवन इफ मेरी उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं एहसान नहीं कर रही कि मैं आप पे दोबारा ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं मान लेती हूँ इस बात को. वैसे ये अभी तक मैं ये नहीं मानती थी, मुझे लगता था कि नहीं, आई एम ट्रस्टिंग यू अगेन.
0: बट वी से दैट लाइक अ फेवर.
1: That's what I'm
0: you know,
1: saying,
0: it's right? like अगर आपके बच्चे ने या आपके कुलीग ने किसी ने कोई गलती कर दी है और हम कहते हैं यू मेड दिस मिस्टेक बट चलो आई एम गोइंग टू ट्रस्ट यू अगेन. डोंट इफ यू डोंट वॉन्ट टू. आप किस पे फेवर कर रहे हैं? यू आर ट्रस्टिंग बिकॉज यू वॉन्ट टू ट्रस्ट. डोंट वॉन्ट टू ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट.

0: अगर आप बार बार इस तरह से रब इन कर रहे हैं देन यू आर रियली नॉट ट्रस्टिंग. ये आप सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं जी हम आप पर बहुत विश्वास करते हैं, हम आप पर बहुत विश्वास, ये कोई बोलने की चीज है ही नहीं. ये तो आपके हर थॉट और हर एक्शन में दिखाई देगा कि आप किस पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं. और अगर हमें बार बार उस व्यक्ति को अपनी उसकी गलती याद दिलानी पड़े, आपने ऐसा किया था उस दिन, अब फिर से अपना विश्वास तोड़ना मत, मतलब वो टूटा हुआ है ऑलरेडी, कुछ भी नहीं है. हम अभी भी उसको चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं. हम सबसे पहले अपने पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मतलब क्या, कि आपने एक बात कही लेकिन करी दूसरी. एंड आई विल से यू ब्रोक माय ट्रस्ट, यू नो यू से समथिंग टू मी बट एक्चुअली इट्स नॉट द ट्रूथ. तो आई से यू हैव ब्रोकन माय ट्रस्ट. व्हाट अबाउट माय ट्रस्ट ऑन माय सेल्फ. मैं अपने आप से सारा दिन में कितना कुछ कहती हूँ और करती कुछ और. आज सुबह डिसाइड किया गुस्सा नहीं करना, शाम तक आकर गुस्सा कर दिया. किसको धोखा दिया?
1: खुद को दे
0: दिया. खुद को कहा कि टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सारा दिन टेंस्ड रहे. किसको धोखा दिया? अपने आप को. हम अपने आप को सारा दिन इतना धोखा दे रहे हैं, अपना नुकसान सारा दिन इतना कर रहे हैं, तो हम दूसरे के साथ लॉयल होना फिर थोड़ा सा इसलिए क्रिटिकल हो जाता है. जब हम अपने आप से सच नहीं बोल पाते हैं, तो औरों से सच बोलना ऑब्वियसली वो बहुत एक ऊंची मंजिल हो जाएगी. लेकिन जितना हम अपने आप के साथ यू नो वी कम बैक टू आवर सेल्व्स एंड वी आर फिल्ड एंड देयर इज नो इनसिक्योरिटी, वी आर लाइक स्टेबल, तो फिर औरों पे ट्रस्ट करना इज इट देयर इज नो एफर्ट. एक्चुअली मिसट्रस्ट करने में फिर आपको एफर्ट लगेगा, बिल्कुल एफर्ट लगेगा, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक विच वी हैव फेल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, आई हैव फेल्ट कि अब किसी के ऊपर मिसट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है. इन द प्रोसेस वंस इन अ व्हाइल इट डज हैपन कि आपने जो ट्रस्ट किया दूसरे ने बिल्कुल उसका यू नो ही जस्ट डिडंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन, बट दैट्स फाइन, दैट विल बी 1 in 100. उस 1 in 100 के लिए जो 100 में आपने विश्वास किया, एक ने धोखा दे दिया, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक दो लोगों ने अगर धोखा दे दिया तो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है जी आजकल दुनिया ऐसी है,
1: दुनिया धोखा देती है. इनफैक्ट जीत गांगुली नोएडा से हैं और एक एमएनसी में काम करते हैं, और इनका जो मेल हमें आया था और वो ये कह रहे हैं कि मेरे टारगेट्स, क्योंकि आजकल जब मार्केटिंग में होते हैं तो टारगेट्स होते हैं, फिर उसके बाद उसके हिसाब से आपको काफी कुछ यू नो चीजें मिलती हैं, कुछ इस तरह से ये बातें होती हैं. तो ही सेज कि मैंने सारी मेहनत की बॉस पे अपनी पूरी तरह से ट्रस्ट करके, और बॉस पे मेरा ट्रस्ट, मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जब बात आई कि टारगेट्स अचीव हो गए हैं तो मेरे टारगेट्स ही चेंज कर दिए गए.
0: ओके.
1: और मेरा जो मेरी मेहनत का पूरा फल मेरे बॉस को मिला और मुझे कुछ भी कंपनसेशन या व्हाटएवर दे
0: कॉल, जो भी
1: चीजें थी वो नहीं मिला गया. अब इतने डिस्ट्रस्ट में, इतने डिप्रेशन में मुझे कोई विश्वास नहीं रह गया. मुझे जिंदगी से ही विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि जब मैंने उस बॉस को, उसके लिए कितना काम किया, उस पे इतना विश्वास किया, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं नौकरी छोड़ दूँ?
0: ट्रू, ये हो सकता है ना, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो होता होगा. तो शायद हमें अपने आप से पहली बात पूछना पड़ेगा कि क्या हमने ट्रस्ट किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए किया था. यू नो हम वैल्यूज को मॉनेटरी या इस तरह की चीजों के साथ इवैल्यूएट या यू नो कंपेयर नहीं कर सकते.
1: लेकिन देखिए एक बात है, ट्रस्ट तो उन्होंने किया कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं अपना टारगेट पूरा कर रहा हूँ, तो उसका क्योंकि बॉस को पता है तो
0: वो ठीक है, वो ठीक बात है. आज उन्होंने वो ट्रस्ट को बिट्रे कर दिया आपके, लेकिन आपने अपनी पूरी सिंसियरिटी से अपने काम को कर दिया था. अब ये सिचुएशन हो गई है कि दूसरे ने आपका सारा क्रेडिट ले लिया. Now what can you do? Two option. Disillusioned. पूरी तरह से you know give up. सोच लें कि आगे से इस तरह से लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए. अपना फायदा सोचना चाहिए. दूसरों पर विश्वास करके देखा क्या हुआ. Good. If that's my thought, that's my destiny. आगे जीवन में जितने भी लोगों के मैं संपर्क में आऊं, चाहे वो ऑफिस में, वो मेरा एक दृष्टिकोण जो उनके प्रति बन जाएगा कि विश्वास नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि किसी एक ने धोखा दिया था. तो वो मेरा जो आगे संबंध बनते जाएंगे वो बहुत अच्छे फाउंडेशन पे नहीं खड़े होंगे. तो बहुत आवश्यकता है कि अभी तुरंत अपने थॉट को चेंज करना पड़ेगा. आई पुट इन माई बेस्ट एफर्ट, मेरे बॉस ने उसको नहीं अप्रिशिएट किया या उसका क्रेडिट ही खुद ले लिया, नाउ व्हाट कैन आई डू? अगर तो मेरे लिए वो सिचुएशन बिल्कुल अपने मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज़ है, देन आई चेंज माई जॉब. अगेन इट्स अ चॉइस, आई कैन चेंज माई जॉब. सेकेंड थिंग इज,
1: वो भी एक्चुअली हमने टेंशन की बात की थी, वो भी सिचुएशन से भागने वाली.
0: हाँ, तो एक्चुअली दैट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन. लेकिन वहां रहकर डिसिल्यूजन रहने से, वहां रहकर एक नेगेटिव वाइब्रेशन बिल्डअप करने से और सारा दिन ये सोचने से कि मैं छोड़ दूं, तो फिर छोड़ दीजिए, यू नो. बट दैट्स नॉट द ऑप्शन, क्योंकि अगर आप जब अपने नेक्स्ट ऑफिस में जाएंगे,
1: नेगेटिविटी लेके जाएंगे और मिस्ट्रस्ट
0: हो सकता है वहां भी और आपको इस तरह से लोग मिले. तो द ऑप्शन विल बी टॉक टू योरसेल्फ, आई पुट इन माय बेस्ट एफर्ट, आई हैव डन थिंग्स सिंसियरली और एंड आई हैव द सैटिस्फैक्शन कि वो टारगेट अचीव हो चुका है. तो सबसे पहली चीज, कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने आप को पहले स्टेबलाइज कर दीजिए, अपनी काउंसलिंग करके पहले स्टेबलाइज कर दीजिए. जब तक वो इनर स्टेबिलिटी नहीं होगी, डोंट टेक द नेक्स्ट स्टेप. चाहे वो बॉस से जाके बात करने की बात है, चाहे वो जॉब चेंज करने, कोई भी इस तरह का डिसीशन डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड में कभी नहीं लेना. पहली बात, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपनी सिंसियरिटी को अप्रिशिएट कीजिए और दूसरे की इनसिंसियरिटी की वजह से अपनी सिंसियरिटी को मत गवा दीजिए. ये दूसरा सामने वाला,
1: क्या फायदा,
0: हाँ, फायदा क्या हुआ? सी, दिस इज अ वेरी डीप थिंग एंड इट कम्स सो इजीली टू पीपल कि मैंने किया, फायदा क्या हुआ, इससे अच्छा मैं आगे से करूंगा ही नहीं. इसका मतलब कि आपके पास एक इतनी वैल्यूबल चीज थी, इतनी वैल्यू थी उस चीज की, लेकिन जस्ट बिकॉज सामने वाले ने उसकी वैल्यू को नहीं समझा, आप अपनी वैल्यूबल चीज को गवा देंगे. लेकिन जिसने वैल्यू नहीं समझी, वो प्रॉब्लम तो उसकी थी. If you are wearing diamonds right now and I don't recognize because I don't have the knowledge, तो मुझे वो diamond और वो पत्थर में शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, कनुप्रिया क्या पत्थर पहन के बैठे हुए हो, पत्थर है ये, कोई काम के नहीं है आजकल. एंड मैं दो बार चार बार आपको कहूँ और चार लोग मेरे साथ ज्वाइन कर लें कि कनुप्रिया पत्थर पहने हुए हैं, फेंको इसको, ये नुकसान कर रहे हैं. If you remember and if you're aware that they are diamonds, will you throw them away? Even if the whole world is telling you, forget one or two people. तो ये अपनी विशेषता की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज एक जो डिसइल्यूजमेंट, यू नो, ये जो हो रही है, ऑनेस्टी आजकल काम नहीं करती है. सिंसियर होने का फायदा नहीं है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते. क्या हमारी विशेषता इसलिए ताकि लोग अप्रिशिएट करें?
1: क्योंकि तुम्हारी ताकत है बेसिकली. ओह यस, दैट्स अ गुड,
0: इट्स माय स्ट्रेंथ. आई, इफ नोबडी अप्रिशिएट्स, फॉरगेट वन और टू पीपल, आई से लेट द होल वर्ल्ड नॉट अप्रिशिएट, यू नो, लेट्स लुक एट द वर्स्ट केस सिचुएशन. पूरी दुनिया नहीं अप्रिशिएट कर रही, फिर भी वो आपकी विशेषता है. आप जिस दिन उसको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं ना, तब सारे अप्रिशिएट करना बंद करते हैं. बट अगर आपको ही नहीं पता चला कि आपके पास डायमंड्स है, देन यू माइट थ्रो इट अवे, देन द लॉस इज योर्स. तो दूसरे की कोई एक गलत बात के लिए अपनी अच्छाई को खत्म कर देना, ये अपने आप से सबसे बड़ा धोखा है. वो क्या हमारे से धोखा करेंगे?
1: हम अपने आप को,
0: हमने ही अपने आप को इतना बड़ा धोखा दे दिया. उन्होंने तो जो किया,
1: एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया ये बोलती आपको जाती है कि इतने ट्रस्टवर्दी नहीं बनो, तुम इतनी ट्रस्टवर्दी क्यों हो? आई हैव गॉन थ्रू इट. ऐसे विश्वास नहीं करते हैं. दुनिया पे विश्वास, दुनिया को समझना सीखो, दुनिया ऐसी है.
0: बिल्कुल,
1: यू नो, सो इट लाइक यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर रॉन्ग.
0: नो, यू विल, दैट्स व्हाई वो जो अपना कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रखना पड़ेगा. एंड आस्क योरसेल्फ अगेन, मुझे डाउट करके ज्यादा अच्छा लग रहा है या विश्वास कर? इट्स ऑल अबाउट दैट, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू आर फीलिंग,
1: यू नो,
0: द जर्नी. द जर्नी, द जर्नी इज आई मीट यू, देन आई मीट अनदर पर्सन, 10 मिनट के बाद आई नी मीट अनदर पर्सन. और मेरी हर डीलिंग, हर ट्रांजैक्शन, हर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तब इंजॉयबल है इफ इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इफ इट इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट. एंड आजकल हम ज्यादातर डिस्टर्ब्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि हम हरेक जिससे मिल रहे हैं उसको डाउट करते हैं. एंड हरेक पे डाउट करते करते करते बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन आई रीच होम, हाउ कैन आई बी हैप्पी?
1: यस, डेफिनेटली.
0: आई हैव जस्ट यू नो ट्रांसमिटेड सो मच ऑफ नेगेटिव एनर्जी टू पीपल, इन रिटर्न मुझे इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी मिल गई है. घर पहुंच गए रात को 8 बजे और कहे जी बहुत भारी लग रहा, खुशी नहीं है. पता नहीं वैसे कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन मूड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा. कैसे अच्छा होगा? सारा दिन हर स्टेप पे क्या किया? एंड ये अपने आप से पूछना है, कौन सी चीज मेरे लिए ठीक है. डोंट सी व्हाट पीपल आर सेइंग, डोंट सी व्हाट द मेजोरिटी इज सेइंग, जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज व्हाट मेक्स मी फील गुड. इट्स ऑल दैट फील गुड फैक्टर. दैट फील गुड फैक्टर इज वेरी इम्पोर्टेंट.
1: डेफिनेटली. एंड यू नो शिवानी, एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, अगेन वी टॉक्ड अबाउट यू नो वी टुक अ क्वेश्चन जो कि एक एम्प्लॉई
0: और इनके केस पे जो इन्होंने लिखा, इट वुड बी नाइस कि वो अपने आप को जब स्टेबलाइज कर ले तो एक बार जाकर बात भी करके आए.
1: ये स्ट्रेंथ होता ये है कि जहाँ धोखा मिला,
0: हाँ.
1: आप अंदर, क्योंकि इतने व्हाट आई यूज्ड टू डू, इतने हर्ट हो जाते हैं, देन आई नेवर यूज्ड टू यू नो इंटरैक्ट.
0: लेकिन वो हर्ट वाली स्टेज में वैसे भी जाना नहीं चाहिए इंटरैक्ट करने के लिए, बिकॉज वो एक नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज है. आई अंडरस्टैंड, आई विल हैव टू पुट माई सेल्फ इन योर पोजिशन फर्स्ट एज द एम्प्लॉई, एंड ये सोचूं कि पहली बात इवन गिव माई सेल्फ द अदर ऑप्शन कि हो सकता है मैंने ठीक से नहीं समझा, हो सकता है कि ये चीटिंग नहीं थी, हो सकता है इसके पीछे कोई और बात है जो मेरे सीनियर्स को पता है जो मुझे पता भी नहीं है, या हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने ये किया है. कुछ भी है, वाई नॉट गो एंड हैव अ डायलॉग. एंड जब अपनी इंटेंशन, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इंटेंशन, आपसे बात करने से पहले मेरा भाव क्या है. अगर मेरा भाव ये है कि आपको जाकर मुझे बताना है कि आपने गलत किया,
1: चाहे प्यार से ही बताना, लेकिन बताना चाहता
0: हूँ इट वोंट वर्क. दैट भाव, जो भावना पीछे है, दैट्स गोइंग टू डू ऑल द वर्क. तो इंटेंशन बिहाइंड एवरीथिंग वी डू. तो अब जब आप बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके मन में उनके प्रति एक बहुत रिस्पेक्ट, एक डिसरिगार्ड नहीं, अभी डिसरिगार्ड है. उन्होंने धोखा दिया, आई कैन नॉट रिस्पेक्ट, आई विल हैव टू से हो सकता है कोई बात है. टिल आई फाइंड आउट, लेट मी नॉट कम टू अ कंक्लूजन, लेट मी गिव द अदर पर्सन अ चांस टू पुट अक्रॉस
1: बेनिफिट ऑफ डाउट
0: हिज पॉइंट. एंड फिर भी अगर बात करने के बाद भी लगे कि उनकी इंटेंशन कुछ राइट नहीं थी, टॉक इट आउट एंड बिल्ड द रिलेशनशिप. Tomorrow it will not happen again. And जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत appreciate करेगा आपके इस
1: पूरे gesture,
0: effort को. You know, कि आप आए, आपने बात की, और आपके बात में या आपसे उसको कोई negativity जब नहीं मिलती है, he will just, you know, be for you totally.
1: क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं guilty,
0: हाँ, guilty तो हमेशा होगा, और इसीलिए जो guilty है वो बहुत ज्यादा आपके सामने aggressive हो जाएगा, क्योंकि जहाँ अंदर कुछ खालीपन है तो उसको भरने का सबसे important, you know, सबसे सहज तरीका होता है बाहर से बहुत, you know, I'm right. I will always keep on projecting it like that. Because actually, internally, there is something which is a little missing. तो ऐसे time पर उसको चाहिए कि कोई आकर उसे एक्सेप्ट कर ले. तो जब अगर ये जाकर उनको उस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे पहले इंटरनली, और फिर जाकर उनको उस तरह से बात करेंगे, miracle can happen.
1: Yes, definitely.
0: It will happen.
1: Again, you know, like when we talk about miracles, we talk about creating destiny, we are able to do it with our positive
0: right.
1: thoughts.
0: And अभी आप देखिए, ये एक belief इनकी destiny change कर सकता. That's what every time that cycle is applicable.
1: Yes.
0: लेकिन हम कह देंगे जी मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे साथ धोखा हो गया. You know, मैंने तो कितनी मेहनत की थी, लेकिन लोग ही आजकल ऐसे हैं कि धोखा दे जाते हैं.
1: Yes.
0: फिर एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाएं, जी मेरा भविष्य क्या है आगे, मैं नौकरी बदलूं, मतलब so much out of control.
1: Yes,
0: jabki like, har cheez hamare control mein, and we are giving away the control.
1: Good, and like finally we are understanding that,
0: yeah,
1: destiny is within us,
0: hands,
1: you know,
0: absolutely.
1: Within our thoughts. So wonderful. In fact, trust is something, you know, which we are lacking. Okay, hum ye life ke examples le rahe hain, rishton ki baat karenge, khaas kar husband wife ke relationship mein trust ki baat bahut zaruri hai, lekin wo hum apni agli kadi mein karenge. Aaj jo baat cheet rahi wo sachmuch kafi clarity ke sath hame nazar aa rahi hai. Bahut bahut shukriya aapka.
0: Thank you.
1: आपके पास भी अगर कोई ऐसा ही सवाल है, कहीं ऐसा लग रहा है कि विश्वास कम हो रहा है जिंदगी में, बहुत सी जिन मूल्यों पर हम खड़े रहना चाहते थे वो कहीं तलाश नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो कम है, तो भाई आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन आपको बता दें कि जो जिस विश्वास पर हमारा और आपका रिश्ता है, उसी विश्वास को एक बार फिर पति पत्नी के और बाकी रिश्तों में भी तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी अगली कड़ी में, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. तो अभी दीजिए इजाजत, मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में. नमस्कार.

लविंग डेजर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कुशल धनुर्धर या निशानेबाज को देखा है? जब एक शिकारी जंगल में किसी अत्यंत तेज और चौकन्ने हिरण का शिकार करने निकलता है, तो वह केवल तीर कमान हाथ में लेकर हवा में तीर नहीं चलाता। सबसे पहले वह अपने शरीर को एक विशेष मुद्रा में बिल्कुल अडिग और स्थिर करता है। अपनी कमान को पूरी ताकत से कानों तक खींचता है, अपनी सांसों को रोकता है और अपनी पूरी एकाग्रता और उस लक्ष्य पर टिका देता है। यदि उसका ध्यान जरा सा भी भटका या कमान ढीली पड़ी, तो वह चंचल हिरण एक ही छलांग में घने जंगल में ओझल हो जाता है और शिकारी का सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है। अध्यात्म की यात्रा भी बाहर के किसी जानवर के शिकार की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर कुलांचे भरते चंचल मन को साधने का एक महाअभियान है। कबीर साहब आज हमें उसी परम धनुर्धर की तरह अपने शरीर और प्राणों को साध कर मन का शिकार करने की कला सिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह दार्शनिक सूत्र। काया कसु कमान जू पंच तत् करी बाण, मारो तो मन मिरग कु नाही तो मिथ्या जान। काया कसु कमान जू पंच तत् करी बाण, काया कसु कमान जू पंच

श्रोताओं, कबीर साहब साधक को एक सच्चे आध्यात्मिक योद्धा की तरह ललकारते हुए कहते हैं, काया कसु कमान जू, हे साधक, तू अपनी इस काया यानी शरीर को योग, संयम और आसन की दृढ़ता से एक कमान यानी खींचे हुए धनुष की तरह पूरी तरह कस लें, इसे आलस और प्रमाद से मुक्त कर दें, पंच तत्व करी बाण और अपने भीतर के पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा अपनी पांचों प्राण ऊर्जाओं को एकाग्र करके ज्ञान और विवेक का एक अचूक बाण यानी तीर बना लो। अब उस अचूक तीर का निशाना कहाँ लगाना है? अगली पंक्ति में कबीर इसका लक्ष्य बताते हैं, मारो तो मन मिर्ग को। यदि तुझे सचमुच कोई शिकार करनी है तो बाहर किसी जीव को मत मार, अपने ही भीतर विषय वासनाओं के घने जंगल में बेतहाशा दौड़ रहे इस मन मिर्ग यानी चंचल मन रूपी हिरण को ज्ञान के तीर से साध लें, इसे शांत कर दें, नहीं तो मिथ्या जान। और यदि तू अपने इस मन को वश में नहीं कर सका तो समझ ले कि तेरी सारी बाहरी पूजा, सारे ग्रंथ, सारे तिलक और सारी साधनाएं मिथ्या यानी पूरी तरह झूठी, दिखावटी और व्यर्थ हैं। यह दोहा हठयोग और राजयोग के समन्वय का शिखर है। मुंडोपनिषद में भी प्रणव अर्थात ओम को धनुष, आत्मा को तीर और ब्रह्म को उसका परम लक्ष्य कहा गया है। मन को यहाँ मिर्ग यानी कस्तूरी मृग की तरह माना गया है जो अपने ही भीतर की सुगंध से अनजान होकर बाहर की झाड़ियों में भटकता रहता है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक शरीर और इंद्रियां अनुशासित नहीं होंगी और जब तक प्राणों की ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होगी, तब तक मन की इस चंचलता को भेदना असंभव है। असली विजय दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने ही मन को साधने में है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर देखिए कि हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है। हम रोज अपने तीरों से दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमजोरियाँ और दूसरों की बुराइयों पर निशाना साधते रहते हैं। हम पूरी दुनिया को सुधारने का बीड़ा उठाए घूमते हैं, लेकिन हमारे भीतर का वह मन मिर्ग वासनाओं की हरियाली देखकर हर पल बेलगाम भागा जा रहा है। आज कोशिश कीजिए अपने भीतर का धनुधर बनने की, अपने शरीर को अनुशासन और अपनी सांसों को सजगता की कमान में कसिए, अपने विवेक का तीर सीधे अपने मन के अहंकार और चंचलता पर चलाइए। जब आप उस राम नाम के सुमिरन से अपने भीतर के इस मन को साध लेंगे तो आपकी सारी भटकाव शांत हो जाएगी और अपने ही भीतर परम आनंद के परम पद को प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

88 बा तथागता, तूने प्रस्तुत किए 4 आर्य सत्य। दुख है, दुखों का कारण है, दुख निरोधन है, तो दुख निरोधन का मार्ग भी है। इन आर्य सत्य में दुख का कारण इस सत्य की खोज तेरे इस प्रतित्य समुत्पाद सिद्धांत के 12 कड़ियों में हुआ है। प्रतित्य समुत्पाद की अविद्या यानी अज्ञान इस श्रृंखला का तूने किया उल्लेख और दिखा दिया ज्ञान संपादन का तत्व यानी 4 आर्य सत्य में से चौथे घटक को स्पर्श कर आर्य अष्टांगिक मार्ग की यात्रा तूने दिखाई निब्बाण की ओर जाने की, पूर्ण रूप से सुख भोगने की, प्रयत्न पूर्वक निब्बाण की ओर जाने का यह ज्ञान साधना का सफर यानी अविद्या का नाश। तूने कहा इस विश्व में जरा मरण है, दुख होने का सत्य तूने निर्देशित किया और उनका कारण बता दिया, जाति। जाति के कारण दुख होता है निर्माण। जाति यानी जन्म, दुख का कारण है जन्म। जन्म होते रहने से दुख की निर्मिति होती है। जाति निर्माण होने का कारण है भव यानी जन्म तब होता है जब जन्म लेने की इच्छा होती है। भव का कारण बनता है उपादान यानी इच्छा तब निर्माण होती है जब होता है मोह तुम्हें। उपादान का कारण है तृष्णा अर्थात आसक्ति के कारण मोह निर्माण होता है। तृष्णा निर्मिति का कारण है वेदना यानी वेदना से निर्माण होती आसक्ति। स्पर्श से निर्माण होती है वेदना यानी स्पर्श संबंध और अनुभूति के संयोग से वेदना का जन्म होता है। षडायतन के कारण निर्माण होता है स्पर्श अर्थात 6 इंद्रियों के माध्यम से स्पर्श अनुभूति होती है। ये कौन सी 6 इंद्रियां हैं? जीभ, नाक, आंख, कान, त्वचा और मन यानी षडायतन। अर्थात 6 इंद्रियां नाम रूप से निर्मित है ये षडायतन। चेतना के कारण इन 6 इंद्रियों की होती है अनुभूति। विज्ञान से निर्माण होते हैं नाम रूप यानी चेतना के कारण शरीर के अस्तित्व का बोध होता है। संस्कार के कारण होती है निर्मिति विज्ञान की और इसके पूर्व का कार्य होता है सहायक चेतना की निर्मिति के लिए। संज्ञा, विज्ञान, संस्कार और वेदना का समुच्चय है चेतना तथा पृथ्वी आप तेज वायु से बनता है रूप यानी काया। पंच स्कंध से नाम रूप बनता है। चेतना का विज्ञान तो विश्व भर में विद्यमान है। शरीर में उसका अस्तित्व नाम रूप से है। अविद्या से निर्माण होता है संस्कार यानी ज्ञान के अभाव में कर्म तैयार होते रहता है। 12 कड़ियों की श्रृंखला अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्शो वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। दुख हमें महसूस होता है कारण जन्म, इच्छा, मोह, आसक्ति, वेदना, स्पर्श, 6 इंद्रिय, नाम रूप, चेतना, पूर्व का कर्म और ज्ञान का अभाव, इन सब की एक दूसरों से संलग्नता होती है। इसीलिए होना चाहिए ज्ञान का प्रभाव अविद्या को समाप्त करने के लिए। ज्ञान का प्रवाह अखंडित चलता रहे। तूने कहा संपूर्ण सृष्टि का यह ज्ञान मुक्त करने के लिए है सहायक। इसीलिए प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत, कार्य कारण भाव का सिद्धांत, 4 आर्य सत्य के साथ जांच परख करना और आर्य अष्टांगिक मार्ग से अगली जीवन यात्रा की ओर पहल करना, जिससे आप सभी ज्ञान से प्रकाशमान होंगे और सुख प्राप्त कर सकते।

नमस्कार, ओम शांती। दुरितांचे तिमिर जाव, विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात। जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात, यहां तक आ गए और हमने ये देखा कि जो जो प्राणी मात्र को ये पृथ्वी पे धरा पे जो कोई प्राणी है, उनके मन में जो कोई आशा है, इच्छा है, यह सफल होने दो, ऐसे माउली ने मांगा। तो अगर हर किसी की इच्छा पूरी हो जाएगी, संभव है, संभव है, क्योंकि वो इच्छा ही अच्छी होगी, बुरी इच्छा होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके पीछे जाएंगे तो विश्व स्वधर्म में सूर्य पाहो। सारा विश्व अगर एक ही सूरज को देखता है, एक ही भगवान को देखता है, और भगवान में स्वधर्म से, आत्मिक स्थिति से देखता है, तो बुरी इच्छा या बुरा विचार, बुरा संकल्प मन में आने की संभावना है ही नहीं। और इसलिए माउली ने कहा, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। मेरे बहुत सारे मित्र जो है वो कहते हैं कि ये नव ओवी है, उसमें से तो इतने कम शब्दों में, ज्यादा से ज्यादा 8-9 एपिसोड में उसका पूरा अर्थ पूरा हो जाएगा। ये जो अर्थ निकलता है ये कहां से है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कवि जो रहता है, एक आधा कवि रहता है, उसका काव्य है, उसका जब रस ग्रहण होता है तो ऊपर ऊपर से शब्द देखेंगे तो अर्थ अलग रहता है, और जब उसका रस ग्रहण करने लगते हैं तो अर्थ अलग निकल जाता है। और इसलिए कहते हैं, जे न देखे रवि ते देखे कवि, और उसके आगे बढ़ के ऐसे ही कहा जाता है, और जो जे न देखे कवि ते देखे अनुभवी। योगीराज थे, माहौली योगीराज थे, और उन्होंने कुछ योग साधना करते समय अनुभव किया होगा, कुछ विजन लिया होगा, और ये विजन उन्होंने प्रत्यक्ष किया, और ये विजन लेने के साथ साथ उन्होंने विश्वात्मक देव परमात्मा से प्रार्थना की। इसको डिकोडिंग भी कहा जाता है। देखिए, पहले जमाने में टेलीग्राम रहता था, कट्टकड़ रहता था ना, उसमें क्या कट्टकड़ करते हैं कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन उसका जब वाक्य तैयार हो जाता था, पंक्ति तैयार हो जाती थी, सेंटेंस तैयार हो जाता था, तो मैसेज आता था। बाद में टेलेक्स आ गया। मेरे कई सारे मित्र जो है वो CS VSNL के, वो समझते होंगे कि वो टेलेक्स में कागज की पट्टी रहती थी और उसमें बहुत सारे छिद्र थे, होल्स थे, और होल्स की पोजीशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन देखने के बाद वो पढ़ सकते थे कि ये मैसेज क्या है, तो मैसेज है कि नहीं। ऊपर से देखेंगे तो कागज की पट्टी है, लेकिन जब खुल के देखेंगे, सोच के देखेंगे, तो उससे मैसेज निकलता है। वैसे ये पसायदान है माउली का, ऊपर से तो नव ओवी है, और अंदर जाके झांक के देखेंगे तो खजाना है, और ये खजाना खोलने का प्रयास, छोटा सा प्रयास शुरू है आपकी प्रेरणा से, आपकी प्रेम से। आप बड़े अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और इसलिए मेरा कहना यह है कि ये जो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीजात, यहां टर्निंग पॉइंट है। अब तक माउली ने एक्सप्लेन किया, बैकग्राउंड तैयार की, लेकिन जैसे मैंने कहा था, माउली का जो विजन है स्वर्ग का, ये स्वर्ग कैसा है, कैसा आएगा, उसका रोड मैप क्या है, वो अभी आगे के चरणों में अपने को दिखेगा, हम देख सकेंगे उसको। तो ये रोड मैप जो है, स्वर्ग जो है, जैसे पिछले एपिसोड में भी हमने डिस्कस किया था, सचमुच स्वर्ग आएगा? क्वेश्चन मार्क।
क्योंकि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग है या नहीं है, इसमें ही बड़ा डिस्प्यूट है। लोग बोलते हैं कि स्वर्ग है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग में जो जाता है तो पीछे वापस नहीं आता बोलने के लिए कि स्वर्ग क्या है, ऐसी मान्यता है। अगर ऐसा है तो यह स्वर्ग की संकल्पना कहां से आई? ये गाने जो लिखे थे चित्रपट में, पिक्चर्स में, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी वसेरा, वो भारत देश मेरा, वो कहां से आया? संकल्पना कहां से आई? ये कवि के मन में जो विचार है वो कहां से आया? स्वर्ग में जो सुख था, आनंद था, वो जो संकल्पना है, आनंद है, सुख है, वो कहां से आई? यही भारतवर्ष है, और इसलिए भारतवर्ष को सोने की नगरी कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं। और मजे की बात देखो, है दोनों सोने के, द्वारका भी सोने की है और लंका भी सोने की है, ऐसे मानते हैं। लेकिन लंका जलाते हैं और द्वारका डूब गई, तो यह द्वारका क्या है और लंका क्या है, ये भी देखना है। तो यह स्वर्ग जो रोड मैप है, स्वर्ग में हर कोई सुख और शांति से जीता है। एक ही धर्म है, एक ही भाषा है, और मनुष्य देवता स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि सनातन धर्म कहते हैं सबसे पहला, क्योंकि हिंदू धर्म की स्थापना भी किसने की हमें मालूम नहीं है। शंकराचार्य जी ने उसका पुनरुज्जीवन किया, लेकिन स्थापना किसने की? और उसके पहले सनातन धर्म कहते हैं, और उससे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये देवता जो थे, 33 करोड़ देवता जो है, कौन है? और माउली ने वो देवताओं का ही वर्णन अगले चरणों में किया है। और देवता बनने की पहली स्टेज है एंजेलिक, फरिश्ता। ये जब स्टेज बनेगी तब देवता बन जाएंगे। और इसलिए देखिए, हमारे यहां जो कहावतें हैं, वाक् प्रचार है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य है। ऐसे नहीं वाक् प्रचार आते हैं, इसलिए हम कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में चली गई। पहले देवताएं थी, देवताएं वाम मार्ग में चली गई, देवताएं भ्रष्ट हो गई। पहले नहीं थी भ्रष्ट, पहले अच्छी थी, बाद में भ्रष्ट हो गई। देवताएं कैसे भ्रष्ट हो सकती है? हमेशा मन में, हर किसी के मन में, दिल में, आत्मा में सत्व गुण, देवताओं का गुण और सुर और असुर दोनों गुण है। जो प्रभावशाली होता है उसके हिसाब से वातावरण निर्मित होती है। और यह संकल्प जो है, यह संकल्प इस वातावरण को श्रेष्ठ या शुद्ध बना सकते हैं या बुरा भी बना सकते हैं। तो विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, सारा विश्व जब एक ही संकल्प में स्थित हो जाएगा और एक संकल्प आएगा कि अभी बहुत हो गया, अभी उसमें परिवर्तन चाहिए, अच्छे दिन आने चाहिए, तो ये विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। और ये परिवर्तन होते समय अवस्था कैसी होगी, ये अगले चरणों में माउली ने रोड मैप दिया है, उसके ऊपर भी हम उसका चिंतन करेंगे। तो शुरुआत में जैसे शुरुआत हो गई, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे तोषो निमज द्यावे पसाय दाने, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। पूरी जो संकल्पना है, एक ही संकल्प जो है, अच्छा ये सृष्टि का परिवर्तन हो, इस धरा पे, इस भारत वर्ष पे स्वर्ग का अवतरण हो, ये संकल्प मन में, एक ही संकल्प आता है। उसका उदाहरण मुझे याद आता है, आळंदी में ऐसे कहते हैं, बीच में जी मराठी न्यूज में भी दिखाया था, आळंदी में ऐसे कहते हैं कि ज्ञानदेव की जो पालखी है वो उठाते हैं, तब ऊपर का जो कलस बोलते हैं, टॉप मंदिर में जो टॉप रहता है, वो कलस जो है वो हिलता है, ऐसी मान्यता है, मैंने भी देखा था।
अभी ये मान्यता है कलश जो है वो फिक्स है, कैसे हिलेगा, लेकिन हिलता है, और वो हिलता है वो उसका फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप भी दिखाई थे न्यूज में। मुझे ये लगता है कि जब 8-9 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जब पालकी उठाते हैं और उनके मन में संकल्प आता है कि ये अभी हिलेगा, एक ही संकल्प एक ही समय आ गया तो जो निर्जीव चीज है वो भी हिलेगी। और यहां तो वातावरण है, तो वातावरण बदल करने की, परिवर्तन लाने की सृष्टि में शक्ति हमारे संकल्प में है। और यही संकल्प कैसे है, ज्ञानदेव जी ने, माउली ने अगले चरणों में दिखाया है, उसका हम चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे, पठन करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसका आनंद भी लेंगे। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, ओम।

नमस्कार ओम शांति। दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जोजे वांचील तो ते लाहो प्राणी जात। इसके ऊपर हमने चिंतन किया विश्व स्वधर्म और सूर्य क्या है ये भी देखा और ये सब होने के बाद जोजे वांछील तो तिलाओ हर एक की इच्छा अगर पूरी होनी है तो इच्छा अच्छी कैसी है इसके ऊपर भी हमने चिंतन किया। अभी जैसे पिछले एपिसोड में बताया था कि ये टर्निंग पॉइंट है या एक एपिसोड पूरा होने के बाद दूसरा एपिसोड शुरू होता है क्योंकि ये प्रीफेस है। सतयुग का जो रोड मैप मैंने कहा था कि माउली के दिमाग में या मन में या विजन में होगा सतयुग कैसे आएगा या स्वर्ग जिसको कहते हैं या पृथ्वी पे इसी धरती पे सुख शांति के दिन कैसे आएंगे ये जो विजन उनका था उसके लिए प्री कंडीशन है कि विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो फिर जोजे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। जब ये होता है तो क्या होगा तो बाकी जो अभी ओवी है बाकी जो लाइनर्स है तो मुझे लगता है ये वर्णन जो है वो स्वर्ग का भी है और स्वर्ग लाने के लिए जो निमित्त है जो कारण है और जिन्होंने लाने हैं उनका भी वर्णन है ऐसा मुझे लगता है। तो ये अगली लाइन जो है तो ये है वर्षत सकल मंगली ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता। वर्षत सकल मंगली वर्षत मीन्स वर्षा शॉवर जैसे बारिश होती है बादल आते हैं बारिश होती है तो जो गर्मी है तपत है धरती की वो ठंडी हो जाती है और ठंडा ठंडक जो है बहुत अच्छी लगती है दिल को। अभी जो हम कहते हैं कलयुग में हमारे जो मन है शरीर तो तपता ही है वो गर्मी का मौसम रहता है तो शरीर तपता है धरती तपती है और बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है और हर कोई बारिश के लिए राह देखता है। अभी हम लोग भी देख रहे हैं ना बारिश के लिए राह कब आएगा क्या होगा बारिश कब आएगी हर एक का प्रेडिक्शन कुछ रहता है उसके लिए बहुत सारी तपस्या करते हैं प्रार्थना करते हैं। वैसे अभी ये कलयुग के अंत में सबके मन भी तप गए हैं पक गए हैं और कहीं ना कहीं शांति की शीतलता की बारिश अगर होगी तो मन को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वर्षत सकल मंगली और कैसे है ऐसे लोग आने चाहिए कि जिनकी वर्षा जो है वर्षा एक्चुअली उपमा दी है वर्षत सकल मंगली मंगल वर्षत सकल मंगली इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोग जो हमेशा अच्छे विचारों की सद्भावना की या सत्संकल्पों की बारिश करते हैं वर्षा करते हैं। यह कैसी हो सकती है वर्षा वर्षत सकल मंगली और सकल मीन्स हमेशा। इसके ऊपर से मुझे याद आया कि मंगल जो है मंगल ग्रह बोलते हैं ना मंगल और मंगल हमेशा अच्छे के लिए बोलते हैं मंगल मुहूर्त मुहूर्त जो है वो भी बोलते हैं मंगल हर कुशल मंगल बोलते हैं किसी का अगर कुशल मंगल है ना सब पवित्र या अच्छा। लेकिन यही मंगल अगर हमारे जन्मपत्री में आ जाता है तो क्या होता है यही मंगल जन्मपत्री में आ जाता है तो कभी कभी वो अमंगल हो जाता है। अभी जो लड़की के पिता है और किसी लड़की के जन्मपत्री में या लड़के के भी जन्मपत्री में मंगल है तो कितनी तकलीफ होती है ये बोलने की जरूरत नहीं है जो अनुभवी है सब जानते हैं। तो ये मंगल जो है कभी मंगल है कभी अमंगल है मंगल वही है
लेकिन हमारे लिए कभी वो अमंगल होता है कभी मंगल होता है। लेकिन मावली जो बोलती है वर्षत सकल मंगली, हमेशा के लिए मंगल, कभी भी अमंगल नहीं है। और ऐसी वर्षा होनी चाहिए, मीन्स हम जब भी कोई भी जो अच्छे लोग हैं जिनको हम संत कहते हैं फरिश्ते कहते हैं, वो कैसे होंगे? हमेशा वर्षा करेंगे अच्छे विचारों की, सद्भावना की, सत विचारों की, सत संकल्पों की वर्षा करेंगे। और जो कोई उनके सामने आएगा उसे आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस। और गुड विशेस और संकल्प जो है या आशीर्वाद जो है उसका हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है। कभी भी कुछ भी प्रसंग होता है, शादी ब्याह होते हैं या किसी का बर्थडे होता है, तो हम हमेशा गुड विशेस देते हैं। क्यों देते हैं गुड विशेस? संकल्प। हम अगर हमेशा शुभ चिंतन करते हैं, दीपावली में किसी सबको ग्रीटिंग देते हैं, दीपावली शुभ चिंतन, कोई भी त्योहार है तो उसके लिए शुभ चिंतन करते हैं, तो ये शुभ चिंतन हम कभी कभी करते हैं, त्योहारों के निमित्त करते हैं या कोई स्पेशल पर्पज है तो करते हैं, सकल मंगली नहीं, वर्षत सकल मंगली। तो मावली जो है, ज्ञानदेव जो है, वो देखते हैं कि ऐसे लोग हमेशा होने चाहिए कि जो हमेशा के लिए सकल मंगली, हमेशा के लिए सुमंगल का चिंतन करेंगे, सुमंगल चिंतन करेंगे, उनका चिंतन हमेशा मंगल होगा और वो सबको बौछार करेंगे। ईश्वर निष्ठांची मांडियाळी, वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांडियाळी। मांडियाळी, मांडियाळी मीन्स क्या है? बहुत बड़ा समुदाय है, ऐसे नहीं कि एक दो आदमी आएंगे और एक दो फरिश्ते होंगे, संत होंगे और वो शुभ चिंतन करेंगे, नहीं, बड़ा समुदाय होगा। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मांडियाळी मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा संकल्प करेंगे तो क्या होगा? वातावरण में बदलाव आएगा। और ये वातावरण में बदलाव आएगा तो इसलिए उन्होंने उपमा दी है मांडियाळी, वर्षत सकल मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांडियाळी। और वो मांडियाळी क्या है? जिनकी निष्ठा ईश्वर के पास है। निष्ठा, निष्ठा मीन्स सिर्फ विश्वास नहीं है, निष्ठा मीन्स एक होता है कैसी भी परिस्थिति आने दो विश्वास अटूट रहता है, और इसलिए उसे निष्ठा बोलते हैं, ईश्वर निष्ठ, ईश्वर में जिनकी निष्ठा है ऐसे। और दूसरा भी निष्ठा भी बोलते हैं, निष्ठा मीन्स ध्यान, ईश्वर का ध्यान जो करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? हमेशा ईश्वर का चिंतन करेंगे। और जब मन में राम रहता है तब कभी हराम होता नहीं है और जिंदगी में आराम भी आ जाता है। अगर मुझे जिंदगी में आराम आना चाहिए तो मन में राम होना चाहिए। और ईश्वर निष्ठांची मांडियाळी, हमेशा चिंतन उनका ईश्वर के बारे में होगा तो मन में कोई बुरे संकल्प आएंगे ही नहीं। और इसलिए ज्ञामाउली ने कहा है, वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांडियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता, अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता। इसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। तो ये रिकैप अगर करेंगे तो क्या होगा? जैसे दुरितान से तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूर्य पाओ, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। ये होने के बाद अभी कैसी कैसी कंडीशन आनी चाहिए, ये जो माउली ने कहा है, वर्षत सकल मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांडियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतु भूता, इसके ऊपर अगले एपिसोड में चिंतन करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जिंदगी है, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हमारे चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि हमें रास्ता मिल गया है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हमने बहुत से मुद्दों को उठाने की कोशिश की है जो हमारे लिए कहीं अड़चन बन जाते थे, कहीं ऐसा लगता था कि इनसे पार नहीं पाया जा सकता। तो आज भी कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। शिवानी जी, हमने पिछली बार अगर आपको याद होगा तो एक कॉल आई थी हमारे पास जिसको हमने डिस्कस किया था कि एक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की प्रॉब्लम थी
1: शिखा
0: जी, और इतना अच्छा उसका रिस्पांस आया क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों ने कहा कि हम फेस कर रहे हैं, लेकिन लगता था कि ये प्रॉब्लम है या नहीं और कैसे इसके बारे में बात की जाए। तो सोल्यूशन हमें अपने ही अंदर तलाशने हैं, ये बात समझ में आई, और नेगेटिविटी को किस तरह से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। तो आज जो मुद्दा हम उठाएं वो भी वो मुद्दा है जिसके लिए हमें बहुत से कॉल्स आए हैं, और वो है रिश्तों की बात। क्योंकि रिलेशनशिप्स जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं, हम में से हर कोई ये जानता है कि रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का या प्यार का रिश्ता नहीं, मेरा और आपका रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, बॉस और सबॉर्डिनेट का रिश्ता, उसमें जो ट्रस्ट की कमी आ गई है, जो फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके लिए क्या करें?
1: आई थिंक औरों पे ट्रस्ट करना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि शायद हम पहले खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, यू नो। तो मुझे जो चीज़ मैं खुद करूँ तो मुझे लगता है दूसरे भी वही करते होंगे। सी, खुद की इंटेग्रिटी, अगर हम खुद अंदर से भरपूर हैं, वी आर फिल्ड एंड यू नो वी आर कॉन्फिडेंट, तो फिर हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। ट्रस्ट करना तब मुश्किल हो जाता है जब इनसिक्योरिटी होती है, एंड उसमें भी जो एक बिलीफ सिस्टम फिर आ जाएगा कि वो है कि ये धोखा देंगे, ये गलत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से वो धारणा बन चुकी है कि मेजोरिटी तो सब लोग धोखा ही देते हैं, मेजोरिटी तो सब लोग गलती कर रहे हैं आजकल,
0: दुनिया तो ऐसी ही
1: ऐसी ही, मतलब ये जो बिलीफ है ना, तो ये थॉट हमें अच्छी वाली लाने नहीं देगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि हम ब्लाइंडली यू नो वी जस्ट नॉट केयरफुल और हम ब्लाइंडली सबकी चीज सबके ऊपर सौंप दें, लेकिन एक व्यक्ति को हम इवैल्यूएट जब एक बार कर लेते हैं, और एक्चुअली हमें स्टार्ट ऑपोजिट चीज से करना चाहिए। हम नॉर्मली करते हैं कि हम परखते रहेंगे, फिर जाकर बहुत समय बाद हम कहेंगे अब हम उनको ट्रस्ट करते हैं। वी कैन ट्राई टू डू इट द अदर वे अराउंड,
0: कंप्लीट फेथ,
1: हम पहले कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं,
0: लेकिन मुझे लगता है उससे हम अपनी इमोशन हटा दें क्योंकि हाँ, वो बहुत हर्ट करता है, यू नो, एक एक बात, बिकॉज आई बिलीव इन दैट। मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ, यू नो, हर बार हम इतना, क्योंकि ये डिस्कशन ऐसा है कि जिसमें पर्सनल मैं इन्वॉल्व ना करूँ ऐसा नहीं हो सकता। इट्स लाइक आई हैव बीन लाइक दिस, यू नो, कि मैं कंप्लीट फेथ पे ही जिंदगी जीती। एक बार प्रोग्राम में कहीं बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था, नहीं पर एक आंख खुली रखनी चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि नहीं, वो भी कहीं गलत होगा, कंप्लीट आंख बंद करके ही फेथ करो। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसको नेगेट करते जाते तो हर्ट साथ में जुड़ता जाता है। पहला धोखा पहला हर्ट देगा, फिर आप दोबारा हिम्मत करके हर्ट विश्वास करते हैं, दूसरा धोखा मिलता है, तो कहीं इमोशन को हम हटा देंगे।
1: अगर हमने रियली बहुत अच्छी तरह से किसी को ट्रस्ट किया था जेन्युइनली अंदर से पूरी तरह से, तो धोखा मिलने का चांस पहली बात बहुत कम है। क्योंकि what we have experienced is कि अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं you will always get trust in return, that's like mandatory, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। सिर्फ ये है कि हमें जब हमें किसी से धोखा मिलता है तो हम अपनी वाली स्थिति हम नहीं चेक कर पाते, हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने हमें धोखा दिया, लेकिन उनके धोखा देने का कारण क्या। अगर हमने रियली अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट ट्रस्ट किया है किसी पे, the person just cannot do without trusting you back, you know, it is like it's totally with you, totally for you, wo bilkul matlab kaise ruk sakta hai aapko trust kare bina, to it will have to start with trusting the person instead of saying ki abhi main inko pehle evaluate kar lu, parakh lu, fir agar lage ki ye theek hai tab trust।
0: sawal ye uthne lagta hai ki do we really understand what real faith is, sahi tarah se vishwas kya kaise kiya ja sakta hai?
1: Sabse pehle ये सोच के सामने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, एक दुकानदार हो, लाइक वी अगेन डिस्कस, थॉट इज ट्रांसमिटिंग, यू नो। तो इट्स एज सिंपल एज अगर मैं एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाऊँ और मेरे मन में ये विचार चल रहा हो, ये तो मुझे चीट करने वाला है, ये तो मुझे चीट करने वाला है, मुझे ध्यान से चलना चाहिए, मुझे ऐसे चलना, आई एम क्रिएटिंग दैट वाइब्रेशन। एंड वो वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचेगा ही. एंड दूसरी तरफ अगर मैं ये थॉट क्रिएट करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे से गलत नहीं कर सकता, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, आई एम ऑनेस्ट इन माई डीलिंग विद पीपल, तो ये मेरे साथ क्यों गलत करेगा. बट देन दिस हैज टू बी मेंटेन्ड विद एवरीबडी. आप ये नहीं कर सकते हो कि आप 10 लोगों के साथ गलत करो और फिर मैं आपके सामने आकर ये सोचूं कि मैंने आपके साथ गलत नहीं किया तो आप मेरे साथ गलत क्यों करेंगे. इफ आई एम क्लीन इन माई डीलिंग विद एवरीबडी, देन देर इज नो वे दैट एनीबडी शुड रिबाउंड एंड डू एनीथिंग रॉन्ग विद मी. लेकिन उसके लिए मुझे वो थॉट रखना पड़ेगा कि ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, देर इज नो रीजन. एंड ट्रस्ट, सिंपल ऑटो रिक्शा, सिंपल शॉपकीपर, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, जैसे बहुत सिंपल बातें होती हैं, जैसे मैं सब्जी लेने जाती हूँ, पहले होते थे कितने का है भैया, ये कितने का है, वजन आपने ठीक से किया नहीं किया, चेक करो, नहीं इसको फिर ऐसे करो, नो बॉन्डिंग, नथिंग. नाउ देयर इज अ फिक्स्ड पर्सन जिससे आई हैव टू टेक एंड आई नेवर आस्क हिम व्हाट इज द रेट ऑफ एनीथिंग बिकॉज एंड आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि क्योंकि एंड स्पेशली अभी के समय पर क्योंकि बहुत कम लोग उनको ट्रस्ट कर पाते हैं, बहुत कम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो जब उन्हें कोई ऐसा किसी को भी मिलता है जो उनके ऊपर इतना ट्रस्ट कर लेता है, वो उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहते, वो तोड़ेंगे ही नहीं, बिकॉज दैट ट्रस्ट इज वेरी वैल्यूएबल टू देम.
0: इट्स सो रेयर,
1: इट्स वेरी रेयर, सो इट्स वेरी वैल्यूएबल एंड इट इज सो प्रेशियस कि मैं 5 रुपए के लिए उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगी आपकी. तो देन यू नो समटाइम्स जो मेरे साथ वो कहेंगे आपने पूछा भी नहीं वो कितने का, मैंने कहा वो राइट ही देगा, वो राइट ही दे रहा है, और अगर उसने 5-10 रुपए ज्यादा ले भी लिए आज नहीं तो कल मुझे कहीं और से अगर पता चली गया, इट्स हिज लॉस. मेन चीज ये है कि दूसरे को ये रियलाइज करना पड़ेगा इट्स हिज लॉस, उसने 10 रुपए कमा लिए, विश्वास खो दिया. बट फॉर मी जस्ट बिकॉज ये सोच के कि कोई एक धोखा देने वाला है, आई कीप डाउटिंग एवरीबडी आई मीट.
0: लेकिन जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके 10 रुपए का उसने धोखा दिया, विल यू कंटिन्यू बीइंग विद हिम? आई जस्ट वांट टू आस्क.
1: नो, आई विल जस्ट हैव टू बी वन स्टेप मोर केयरफुल.
0: या एंड अनदर, विल यू गेट हर्ट?
1: नो, बिकॉज ही डिड नॉट टेल मी ट्रस्ट मी. सी व्हाई आई विल नॉट गेट हर्ट, ये मेरा डिसीशन था. उसने नहीं कहा मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, उसने ये नहीं कहा कि आप बिना पूछे लो, ये मेरा डिसीशन था. उसने ये नहीं, उसने रेट बताने से मना नहीं किया, ये मेरा डिसीशन था. तो अगर ये मेरा डिसीशन है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीशन. आई प्लेड माई पार्ट, ही प्लेड हिज पार्ट. आई प्लेड माई पार्ट ऑफ नॉट आस्किंग, ही प्लेड हिज पार्ट ऑफ टेकिंग मोर मनी. फ्रॉम टुमारो आई विल बी केयरफुल, बट आई विल नॉट गेट हर्ट. Not with him, because he's fine with what he did.
0: Achha, aur,
1: but I will not stop trusting other people just because one person turned out to be a little different. Lekin jab majority time soch aise chalti hai ki nahi ye galat hi kar rahe hai. Matlab aap dekhiye, aap morning se start kijiye. Agar maid late aa jaye, kyun late aaye, wo genuine bhi koi reason hoga to nahi doubt. Auto rickshaw wala doubt, shopkeeper se mile doubt. Inhi logon par itna doubt karte hain. तो जो अपने कोलीग्स, ये तो मेरे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता, इसको तो आगे बढ़ना है, ये तो मुझे नीचे खींचना चाहता है, ये तो मेरे पीठ पीछे गलत बोलता ही होगा. वी आर क्रिएटिंग सो मच ऑफ दैट थॉट. ये भी हो सकता है कि ऐसा हो रहा है कि आपके पीठ पीछे कोई बोल रहा है या कोई कुछ गलत कर रहा है, बट देन हाउ एम आई गोइंग टू चेंज इट? यू सी, इफ आई कीप चर्निंग अबाउट इट एंड वही एनर्जी मैं और ट्रांसमिट करूँ, तो वो मिसट्रस्ट और स्ट्रांग होता जाएगा. I will have to still keep that thought कि नहीं ये ठीक है, ये अच्छे हैं. I will have to recognize the goodness in everybody because everybody is so beautiful.
0: And another thing is like maybe we have to continue giving chances. That's what I wanted to ask. Should we continue giving chances even if we
1: actually
0: have
1: we are nobody to give a chance to anybody. Who are we? Who has given me the authority to give you a chance? You are what you are. ठीक है, आपको जैसे रहना है आप रहिए, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपको चांस देने का, आपको फॉरगिव करने का. आई एम नोबडी. ठीक है, आई ओनली हैव अ चॉइस कि मुझे आपके बारे में कैसा सोचना है. दैट्स ऑल, आई जस्ट हैव दैट मच चॉइस. आई डोंट हैव द पावर टू चेंज यू, आई डोंट हैव द पावर टू मेक यू लाइक आई वॉन्ट यू टू बी. आई जस्ट हैव द पावर टू चूज माई थॉट. नाउ मेरे पास चॉइस है कि आपके बारे में सोचूं कि आप बहुत अच्छे हैं, या आपके बारे में सोचूं कि नहीं आप तो धोखा दे सकते हैं, आपके बारे में सोचूं कि आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, या ये सोचूं कि आप मेरे साथ गलत ही करेंगे, आपके बारे में सोचूं कि आप सच बोल रही हैं इस टाइम, या सोचूं कि आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं. दैट्स ऑल द चॉइस आई हैव and just depending on these choices that I make in every thought, I am building or breaking a relationship.
0: वंडरफुल. लेकिन अगर हम ये जो हमने अभी जो मुद्दे उठाए, जो एग्जांपल्स या जो बातें ली, जो कोट किया, वो लोग थे जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं.
1: लाइक डेफिनेटली.
0: लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं
1: राइट
0: जिनको हम जो हमारे परमानेंट है, हमारे अपने हैं,
1: राइट.
0: वहाँ जो ट्रस्ट ब्रेक होना और उसके बाद दोबारा अपने आप को तैयार करना, इवन इफ मेरी उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं एहसान नहीं कर रही कि मैं आप पे दोबारा ट्रस्ट कर रही हूँ. मैं मान लेती हूँ इस बात को. वैसे अभी तक मैं ये नहीं मानती थी, मुझे लगता था कि नहीं, आई एम ट्रस्टिंग यू अगेन,
1: बट वी से दैट लाइक अ फेवर.
0: That's what I'm
1: you know, it's like अगर आपके बच्चे ने या आपके कुलीग ने किसी ने कोई गलती कर दी है और हम कहते हैं

0: ये तो आपके हर थॉट और हर एक्शन में दिखाई देगा कि आप किस पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं. और अगर हमें बार बार उस व्यक्ति को अपनी उसकी गलती याद दिलानी पड़े, आपने ऐसा किया था उस दिन, अब फिर से अपना विश्वास तोड़ना मत, मतलब वो टूटा हुआ है ऑलरेडी, कुछ भी नहीं है. हम अभी भी उसको चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं. हम सबसे पहले अपने पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मतलब क्या, कि आपने एक बात कही लेकिन करी दूसरी. एंड आई विल से यू ब्रोक माई ट्रस्ट. यू नो यू से समथिंग टू मी बट एक्चुअली इट्स नॉट द ट्रूथ. तो आई से यू हैव ब्रोकन माई ट्रस्ट. वट अबाउट माई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ. मैं अपने आप से सारा दिन में कितना कुछ कहती हूँ और करती कुछ और. आज सुबह डिसाइड किया गुस्सा नहीं करना, शाम तक आकर गुस्सा कर दिया. किसको धोखा दिया?
1: खुद को दे दिया.
0: खुद को कहा कि टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सारा दिन टेंस्ड रहे. किसको धोखा दिया? अपने आप को. हम अपने आप को सारा दिन इतना धोखा दे रहे हैं, अपना नुकसान सारा दिन इतना कर रहे हैं, तो हम दूसरे के साथ लॉयल होना फिर थोड़ा सा इसलिए क्रिटिकल हो जाता है. जब हम अपने आप से सच नहीं बोल पाते हैं, तो औरों से सच बोलना ऑब्वियसली वो बहुत एक ऊंची मंजिल हो जाएगी. लेकिन जितना हम अपने आप के साथ, यू नो, वी कम बैक टू आवर सेल्व्स एंड वी आर फिल्ड एंड देयर इज नो इनसिक्योरिटी, वी आर लाइक स्टेबल, तो फिर औरों पे ट्रस्ट करना इज इट, देयर इज नो एफर्ट एक्चुअली. मिसट्रस्ट करने में फिर आपको एफर्ट लगेगा, बिल्कुल एफर्ट लगेगा, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक विच वी हैव फेल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं, आई हैव फेल्ट कि अब किसी के ऊपर मिसट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है. इन द प्रोसेस वंस इन अ व्हाइल इट डज हैपन कि आपने जो ट्रस्ट किया दूसरे ने बिल्कुल उसका, यू नो, ही जस्ट डिडंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन, बट दैट्स फाइन, दैट विल बी 1 in 100. उस 1 in 100 के लिए जो 100 में आपने विश्वास किया, एक ने धोखा दे दिया. लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक दो लोगों ने अगर धोखा दे दिया तो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है जी आजकल दुनिया ऐसी है,
1: दुनिया धोखा देती है. इनफैक्ट सरबजीत गांगुली नोएडा से हैं और एक एमएनसी में काम करते हैं, और इनका जो मेल हमें आया था और वो ये कह रहे हैं कि मेरे टारगेट्स, क्योंकि आजकल जब मार्केटिंग में होते हैं तो टारगेट्स होते हैं, फिर उसके बाद उसके हिसाब से आपको काफी कुछ, यू नो, चीजें मिलती हैं, कुछ इस तरह से ये बातें होती हैं. तो ही सेज कि मैंने सारी मेहनत की बॉस पे अपनी पूरी तरह से ट्रस्ट करके, और बॉस पे मेरा ट्रस्ट, मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जब बात आई कि टारगेट्स अचीव हो गए हैं तो मेरे टारगेट्स ही चेंज कर दिए गए.
0: ओके.
1: और मेरा जो मेरी मेहनत का पूरा फल मेरे बॉस को मिला और मुझे कुछ भी कंपनसेशन या व्हाटएवर
0: मॉनेटरी उसके लिए नहीं,
1: जो भी चीजें थी वो नहीं मिला गया. अब इतने डिस्ट्रस्ट में, इतने डिप्रेशन में मुझे कोई विश्वास नहीं रह गया. मुझे जिंदगी से ही विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि जब मैंने उस बॉस को, उसके लिए कितना काम किया, उस पे इतना विश्वास किया, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं नौकरी छोड़ दूँ?
0: ट्रू, ये हो सकता है ना, इस तरह की चीजों के साथ इवैल्यूएट या यू नो कंपेयर नहीं कर सकते.
1: लेकिन देखिए, एक बात है, ट्रस्ट तो उन्होंने किया कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं अपना टारगेट पूरा कर रहा हूँ, तो उसका, क्योंकि बॉस को पता है, तो
0: वो ठीक है, वो ठीक बात है. आज उन्होंने वो ट्रस्ट को बिट्रे कर दिया आपके, लेकिन आपने अपनी पूरी सिंसियरिटी से अपने काम को कर दिया था. अब ये सिचुएशन हो गई है कि दूसरे ने आपका सारा क्रेडिट ले लिया. नाउ व्हाट कैन यू डू? टू ऑप्शन, डिसिल्यूजन्ड, पूरी तरह से, यू नो, गिव अप. सोच लें कि आगे से इस तरह से लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपना फायदा सोचना चाहिए, दूसरों पर विश्वास करके देखा क्या हुआ. गुड, इफ दैट्स माय थॉट, दैट्स माय डेस्टिनी. आगे जीवन में जितने भी लोगों के मैं संपर्क में आऊं, चाहे वो ऑफिस में, वो मेरा एक दृष्टिकोण जो उनके प्रति बन जाएगा कि विश्वास नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि किसी एक ने धोखा दिया था, तो वो मेरा जो आगे संबंध बनते जाएंगे वो बहुत अच्छे फाउंडेशन पे नहीं खड़े होंगे. तो बहुत आवश्यकता है कि अभी तुरंत अपने थॉट को चेंज करना पड़ेगा. आई पुट इन माई बेस्ट एफर्ट, मेरे बॉस ने उसको नहीं अप्रिशिएट किया या उसका क्रेडिट ही खुद ले लिया. नाउ व्हाट कैन आई डू? अगर तो मेरे लिए वो सिचुएशन बिल्कुल अपने मेरे कंट्रोल के बाहर की चीज है, देन आई चेंज माई जॉब. अगेन इट्स अ चॉइस, आई कैन चेंज माई जॉब. Second thing is,
1: वो भी actually हमने tension की बात की थी, वो भी situation से भागने वाली.
0: हाँ, तो actually that's not a very good option. लेकिन वहाँ रहकर disillusioned रहने से, वहाँ रहकर एक negative

0: वाइब्रेशन बिल्डअप करने से और सारा दिन ये सोचने से कि मैं छोड़ दूं तो फिर छोड़ दीजिए, यू नो, बट दैट्स नॉट द ऑप्शन. क्योंकि अगर आप जब अपने नेक्स्ट ऑफिस में जाएंगे
1: नेगेटिविटी लेके जाएंगे और मिस्ट्रस्ट
0: हो सकता है वहाँ भी और आपको इस तरह से लोग मिले, तो द ऑप्शन विल बी टॉक टू योरसेल्फ, आई पुट इन माय बेस्ट एफर्ट, आई हैव डन थिंग्स सिंसियरली और एंड आई हैव द सैटिस्फैक्शन कि वो टारगेट अचीव हो चुका है. तो सबसे पहली चीज, कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने आप को पहले स्टेबलाइज कर दीजिए, अपनी काउंसलिंग करके पहले स्टेबलाइज कर दीजिए. जब तक वो इनर स्टेबिलिटी नहीं होगी, डोंट टेक द नेक्स्ट स्टेप, चाहे वो बॉस से जाके बात करने की बात है, चाहे वो जॉब चेंज करने, कोई भी इस तरह का डिसीशन डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड में कभी नहीं लेना. पहली बात, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपनी सिंसियरिटी को अप्रिशिएट कीजिए और दूसरे की इनसिंसियरिटी की वजह से अपनी सिंसियरिटी को मत गवा दीजिए. ये दूसरा सामने वाला
1: क्या फायदा,
0: हाँ,
1: काम करने
0: फायदा क्या हुआ. सी दिस इज अ वेरी डीप थिंग एंड इट कम्स सो इजीली टू पीपल कि मैंने किया फायदा क्या हुआ, इससे अच्छा मैं आगे से करूंगा ही नहीं. इसका मतलब कि आपके पास एक इतनी वैल्यूबल चीज थी, इतनी वैल्यू थी उस चीज की, लेकिन जस्ट बिकॉज सामने वाले ने उसकी वैल्यू को नहीं समझा, आप अपनी वैल्यूबल चीज को गवा देंगे. लेकिन जिसने वैल्यू नहीं समझी, वो प्रॉब्लम तो उसकी थी. If you are wearing diamonds right now and I don't recognize because I don't have the knowledge, तो मुझे वो डायमंड और वो पत्थर में शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चल रहा. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कनुप्रिया क्या पत्थर पहन के बैठे हुए हो, पत्थर है ये, कोई काम के नहीं है आजकल. एंड मैं दो बार चार बार आपको कहूँ और चार लोग मेरे साथ ज्वाइन कर लें कि कनुप्रिया पत्थर पहने हुए हैं, फेंको इसको, ये नुकसान कर रहे हैं. If you remember and if you're aware that they are diamonds, will you throw them away? Even if the whole world is telling you, forget one or two people. तो ये अपनी विशेषता की value पता होनी चाहिए, ये बहुत important है. आज एक जो disillusion, you know, ये जो हो रही है, honesty आजकल काम नहीं करती है. Sincere होने का फायदा नहीं है, लोग appreciate नहीं करते. क्या हमारी विशेषता इसलिए ताकि लोग appreciate करें?
1: क्योंकि तुम्हारी ताकत है basically. Oh yes, that's a good way.
0: It's my strength. If nobody appreciates, forget one or two people, I say let the whole world not appreciate. You know, let's look at the worst case situation. पूरी दुनिया नहीं appreciate कर रही, फिर भी वो आपकी विशेषता है. आप जिस दिन उसको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं ना, तब सारे अप्रिशिएट करना बंद करते हैं. बट अगर आपको ही नहीं पता चला कि आपके पास डायमंड्स है, देन यू माइट थ्रो इट अवे, देन द लॉस इज योर्स. तो दूसरे की कोई एक गलत बात के लिए अपनी अच्छाई को खत्म कर देना, ये अपने आप से सबसे बड़ा धोखा है. वो क्या हमारे से धोखा करेंगे?
1: हम अपने आप को,
0: हमने ही अपने आप को इतना बड़ा धोखा दे दिया. उन्होंने तो जो किया
1: वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया ये बोलती आपको जाती है कि इतने ट्रस्टवर्दी नहीं बनो, तुम इतनी ट्रस्टवर्दी क्यों हो. आई हैव गॉन थ्रू इट. ऐसे विश्वास नहीं करते हैं, दुनिया पे विश्वास, दुनिया को समझना सीखो, दुनिया ऐसी है. यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर रॉन्ग.
0: यू विल, दैट्स व्हाई वो जो अपना कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रखना पड़ेगा. एंड आस्क योरसेल्फ अगेन, मुझे डाउट करके ज्यादा अच्छा लग रहा है या विश्वास कर. इट्स ऑल अबाउट दैट, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू आर फीलिंग. द जर्नी इज आई मीट यू, देन आई मीट अनदर पर्सन, 10 मिनट के बाद आई मीट अनदर पर्सन. और मेरी हर डीलिंग, हर ट्रांजैक्शन, हर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तब इंजॉयबल है इफ इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इफ इट इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट. एंड आजकल हम ज्यादातर डिस्टर्ब्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि हम हर एक जिससे मिल रहे हैं उसको डाउट करते हैं. एंड हर एक पे डाउट करते करते करते बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन आई रीच होम, हाउ कैन आई बी हैप्पी?
1: यस, डेफिनेटली.
0: आई हैव जस्ट यू नो ट्रांसमिटेड सो मच ऑफ नेगेटिव एनर्जी टू पीपल, इन रिटर्न मुझे इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी मिल गई है. घर पहुंच गए रात को 8 बजे और कहे जी बहुत भारी लग रहा, खुशी नहीं है. पता नहीं वैसे कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन मूड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा. कैसे अच्छा होगा? सारा दिन हर स्टेप पे क्या किया? एंड ये अपने आप से पूछना है, कौन सी चीज मेरे लिए ठीक है? डोंट सी व्हाट पीपल आर सेइंग, don't see what the majority is saying. Just most important is what makes me feel good.
1: Mm.
0: It's all that feel good factor. Feel good factor is very important.
1: Definitely. And Shivani, actually, when we talk about relationships, again, we talked about we took a question jo ki ek employer
0: aur inke case pe jo inhone likha, it would be nice ki wo apne aap ko jab stabilize kar le to ek bar jaakar baat bhi karke aaye.
1: Ye strength होता ये है कि जहाँ धोखा मिला
0: हाँ.
1: आप अंदर क्योंकि इतने व्हाट आई यूज्ड टू डू इतने हर्ट हो जाते हैं देन आई नेवर यूज्ड टू यू नो इंटरैक्ट.
0: लेकिन वो हर्ट वाली स्टेज में वैसे भी जाना नहीं चाहिए इंटरैक्ट हाँ. करने के लिए बिकॉज वो एक नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज है. आई अंडरस्टैंड आई विल हैव टू पुट माई सेल्फ इन योर पोजिशन फर्स्ट एज द एम्प्लॉय एंड ये सोचूं कि पहली बात even give myself the other option कि हो सकता है मैंने ठीक से नहीं समझा हो सकता है कि ये cheating नहीं थी हो सकता है इसके पीछे कोई और बात है जो मेरे seniors को पता है जो मुझे पता भी नहीं है या हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने ये किया है कुछ भी है why not go and have a dialogue and जब अपनी intention सबसे important बात होती है intention आपसे बात करने से पहले मेरा भाव क्या है अगर मेरा भाव ये है कि आपको जाकर मुझे बताना है कि आपने गलत किया
1: चाहे प्यार से ही बताना लेकिन
0: इट वोंट वर्क दैट भाव जो भावना पीछे है दैट्स गोइंग टू डू ऑल द वर्क तो इंटेंशन बिहाइंड एवरीथिंग वी डू तो अब जब आप बात करने जा रहे हैं सबसे पहले आपके मन में उनके प्रति एक बहुत रिस्पेक्ट एक डिसरिगार्ड नहीं अभी डिसरिगार्ड है उन्होंने धोखा दिया आई कैन नॉट रिस्पेक्ट आई विल हैव टू से हो सकता है कोई बात है टिल आई फाइंड आउट लेट मी नॉट कम टू अ कंक्लूजन लेट मी गिव द अदर पर्सन अ चांस टू पुट अक्रॉस
1: बेनिफिट ऑफ डाउट
0: हिज पॉइंट एंड फिर भी अगर बात करने के बाद भी लगे कि उनकी इंटेंशन कुछ राइट नहीं थी टॉक इट आउट एंड बिल्ड द रिलेशनशिप Tomorrow it will not happen again. And जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत appreciate करेगा आपके इस
1: पूरे gesture
0: effort को. You know कि आप आए आपने बात की और आपके बात में या आपसे उसको कोई negativity जब नहीं मिलती है he will just you know be for you totally.
1: क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं guilty
0: हाँ guilty तो हमेशा होगा और इसीलिए जो guilty है वो बहुत ज़्यादा आपके सामने aggressive हो जाएगा क्योंकि जहाँ अंदर कुछ खालीपन है तो उसको भरने का सबसे important you know सबसे सहज तरीका होता है बाहर से बहुत you know I'm right. I will always keep on projecting it like that. Because actually, internally, there is something which is a little missing. तो ऐसे time पर उसको चाहिए कि कोई आकर उसे accept कर ले. तो जब अगर ये जाकर उनको उस तरह से accept कर लेंगे पहले internally और फिर जाकर उनको उस तरह से बात करेंगे, miracle can happen.
1: Yes, definitely.
0: It will happen.
1: Again, you know, like when we talk about miracles, we talk about creating destiny, we are able to do it with our positive
0: right.
1: thoughts.
0: And abhi aap dekhiye, ye ek belief इनकी डेस्टिनी चेंज कर सकता है दैट्स व्हाट एवरी टाइम दैट साइकिल इज एप्लीकेबल लेकिन हम कह देंगे जी मेरी किस्मत ही खराब थी मेरे साथ धोखा हो गया मैंने तो कितनी मेहनत की थी लेकिन लोग ही आजकल ऐसे हैं कि धोखा दे जाते हैं फिर एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाएं जी मेरा भविष्य क्या है आगे मैं नौकरी बदलूं मतलब so much out of control jabki har cheez hamare control mein and we are giving away the control
1: good and like finally we are understanding that destiny is within us you know within our thoughts so wonderful in fact trust is something you know which we are lacking okay hum ye life ke examples le rahe hain rishton ki baat karenge khas kar husband wife ke relationship mein trust ki baat bahut zaruri hai lekin wo hum apni agli kadi mein karenge aaj jo baat cheet rahi wo sachmuch kafi clarity ke sath hame nazar aa rahi hai bahut bahut shukriya aapka
0: thank you
1: आपके पास भी अगर कोई ऐसा ही सवाल है कहीं ऐसा लग रहा है कि विश्वास कम हो रहा है जिंदगी में बहुत सी जिन मूल्यों पर हम खड़े रहना चाहते थे वो कहीं तलाश नहीं पा रहे हैं कुछ ऐसा है जो कम है तो भाई आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं ईमेल भेज सकते हैं हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com तो इसी के साथ वक्त है कि आपसे इजाजत लें लेकिन आपको बता दें कि जो जिस विश्वास पर हमारा और आपका रिश्ता है उसी विश्वास को एक बार फिर पति पत्नी के और बाकी रिश्तों में भी तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी अगली कड़ी में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में तो अभी दीजिए इजाजत मुलाकात करेंगे अगली कड़ी में नमस्कार